किस कान, सब किस करना अपने आप। रे मन मेरे तू तां को जाप, साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब।

अवतार हर सरने आयो दास तेरा प्रभु ऊच अगम मरार काड ले हो पौ जल बिखम ते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवां मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाव आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोई पूर रहे आ सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ

सलाही है जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आइए सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सखाली सोवै हथी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली भाई

काल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगह नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्यों रे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे एक पाखंडी नाम ना राच्य है एक हर हर चरण।

होकर पत तपनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौं दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन धन पछताणी तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा भणत नानक अंदेसा एही बिन दर्शन कैसे रहूं सनेही मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाऊ सभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई।

जाई, ना यह धन डूबै ना इस धन को मिलै सजाई। इस धन की देखो वडियाई, सहजे माते अन दिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई, इस धन बिन कहो किने परम गत पाई। भणत नानक अकथ की।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान इशनानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभवन एका ज्योति जिहवा डंडी एहो घट शाबा तोलो नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर कै शब्द मरे मन मारी सुंदर जोगा तारी जियो हम मैं जलिया मनो विसारी।

गुरमुख मिले से ना विछड़ है, पाव है सच सोहे। एक भगती सार ना जाननी, मनमुख भरम भुलाए।

आनंद त्याई हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू आन देन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर दे।

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परी दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सोता गुरमुख नाम तरे रहाओ कलयुग नाम प्रधान पदारथ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपै अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरेओ मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उगर सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हरि अंगीकार करे सेवक पैज रखै मेरा गोविंद सरल परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी उर धरियो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिबलाई साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादक रविया सरन परे जपियो ते पाई।

गण गंधर बे जपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई कथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरा मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया।

पाग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरी अड़े।

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी एह कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरियो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनीता।

मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

तिस को कबू ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा को फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

कह तपत थम गल लाए रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ बिकार पात्र गलह बांदे निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार ना परना जाय काम क्रोध लो

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मने।

साधु जी अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकाड़ घड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था। कहो नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिस है साज निवाजिया

दिस ताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीरथ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए राम।

दुख राग अलापे, मन नहीं हर हर गावा, हर कसोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता,

सब किस जाना मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया रहा दूजा। मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आव है तब ही पत पूरी, बिसरत रलिया खाक रहाओ, रूप रंग खुशियां मन।

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूढ़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

जन नानक सद बलिहारा मारू महला पंजवा मोहनी मोह लिए त्रै गुनिया लोभ व्यापी झूठी दुनिया मेरी मेरी कर कै संची।

सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहो बिद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दोख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काढ़ नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मोहन अलख अपारा दान पाव संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिपत अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकि किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो रहाउ अवगत सिंह मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु ना।

होशे अमर जोग जोग जीओ रहाओ। नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो। मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रितपाल माता।

महा भोजन माहे तुलोहो जाको लिखियो माथ दूबे नाम बिन घन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उचा।

ओंकार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग वजोग तुरों ही हुआ पंच धात कर पुतला किया साहै कै फरमायड़ै जी देही विच जीओ आए पया जिथै अगन पखै पड़हारी ऊर्द मुख महागुबारी सास सास संभाले सोई उतै

वैदो ना वाई भैणो ना पाई एको सहाई राम ही कीता जसो होवे पापा मलो धोवे सो सिमरहो प्रधान ही कट कटे वासी सर्ब निवासी अस थेर जाका थान ही आवे ना जावे संगे समावे पूरन जाका काम ही भगत जना का राखन हारा संत जीव है जप प्राण अधारा करन कारण समरथ स्वामी नानक तिस कुर्बान ही।

कै पछताए छूटत नाहिन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मह जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मह पाग्यो मारू अष्टपदियां।

साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

गुरमति दद मतीय अमृत पाई है नाम निदाना मन मुख तत ना जाननी पशु माहे समाना हौं मैं मेरा मरी मर

दिया समुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाओ सतगुरु है बोहिथा शब्द लगावनहार।

को कछु नहीं गुरपुरे पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुपर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन भागा तन नाही जिनके नाम ना मन वसै

सच कार कमाई विचड़िया कहो मेल लय गुर कहो बल जाई लाले गोले मत खरी गुर की मत नीकी साची सुरत सुहावनी मन मुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सच धीरक तुरकी सच है बैसने उठना सच भोजन भाखिया चित सचै वितो सचा साचा रस चाखिया साचै घर साचै रखी गुर बचन सुभाखिया मन मुख कौ आलस घणो हाथे ओ जाड़ी हाथा चुगै नित चोगड़ी लग बंध बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज ताड़ी अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी बिन साचे जीओ जल बलो।

लालह गर्ब छोड़िया गुर कै पै सहज सुपाई लालह खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया।

मन हो विसारिए नित देवै चढ़ै सुआया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिनह विच पाया जां कृपा करे तां सेविए सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचों आप गवाए वंदन तूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए।

नानक नाम रखे से निर्मले साचै रहे समाई मारू महला पहला हुक्म भया रहना नहीं तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द बिच।

चलना मुखे अमृत नाव मेरे ठाकुर हाथ वडियाईया मेल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देख सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी टिस खावे गुरसागर सत

पीए, पारस संग पीजै, वन्नी साचे लाल की, किन कीमत कीजै, पेखी हाथ न लबै, तीर्थ नहीं दाने, पूछौ बेद पढ़ंतिया, मूठी बिन माने, नानक कीमत

हर हीरे ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पीटे दुर्मत कुमन कीरे दसंतर भवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरे काची पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टूरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई छिंथा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम पलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर कीन से आपे निंदा कर कर नरक निवासी।

आक बेपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे तेशो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है नाम ना जपई।

दिस धावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कीर्तना मिटही हुक्म ना बूजै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चेतन।

मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरै गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ ले जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे कर्ण पलाव करे नहीं पावे एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन

हो मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बुरु दो नैनो नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम नारिदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मितई जन्म मरे का कहो दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम बसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावह जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमर हो गुर बचन समारोह संगत हर जन पाव करे।

सखी हमारू कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा धन कंत पछाणिया सुख सुती निसडेह पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक बलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए।

बेद संभाल है बिख भूले लेखारी कल्लर खेती तरवर कंठे बागा पहर है कजल चर है यह संसार तिसै की कोठी जो पैसा है सो गर्भ जर है रैयत राजे कहां सबाए दोहो अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै

जन सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

किन्हियो पायो शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किसना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिनसह जिस बसह मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े।

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करहें ओचार सिमर स्वामी सुख सहज कुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्व।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी मन

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्रापते जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुखत जावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विध वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

तो पहो मन माही, इस ही मह जिसकी पत राख है, इस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो पागे तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मान, बुझ हुक्मै दुर्मत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औध बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहार लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जाटो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर अगली

चित चाल है, पार कर जोह है घर नहीं पाल है। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई। गुरते बूजै त्रे पवन सूजै।

साहिब सबना सिर भाए मिले भौ जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

ठहराई है। जिस बख्शे तिस दे वड्याई, सब सहदाता तिल ना तमाई। हरपुर धार रहया ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार।

जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत।

जीवन मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर,

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाणै मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर अद्धी होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे।

ठाकिह कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावह, ज्यों तुद भावै तिवै चलावह, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मन

गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपहु मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले।

पर हर दुख डालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कलमल मैल नाही ते निर्मल कोई रह भगत लिवलाई।

प्राणी हर जप जप हृदय त्याई हे छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा साकत कूड़ पचह मन हमै दोह मार्ग पचह पचाई हे छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यो तरिय पव जल पाई हे आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज्जे

एकहु कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सत्यारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही बैस है तख्त।

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजै पैंजै रली करीजै, बिन अब भगती बाद मरीजै।

संग शब्द कर जाण, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे न कोई, साच शब्द पेंजह पत होई, आपे बख्श लए किस पावे, हौ मैं गर्भ निवारा ही, गुर किरपा ते हुक्म पछाणै।

पाए अमृत रस पाए जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाए काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट अपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

मुखर लह चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इयों समदर्शी चीनाही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु इयों आत्म रामै लीनाही नारद सारद सेवक तेरे।

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हौ मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुरु मिलहो चीनहो बेदसाई, जित प्रभ पावहो गणत ना काई। हौ मैं मार करहो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभु पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सत गुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। पिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर पिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह।

अगन बेख चाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद जाना नाम जपो सुख साराही सतगुर तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेह रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोए अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत न उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह।

राम जपहु अंतरगत ध्याने, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहो हर गुण गावहो तत विचारहो हर लिवलावहो।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइय शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डांड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अफारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जपिए पार उतारा ही गुर की दात ना मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ ना आवे मन सो प्रभ अपरे अपारा ही गुर ते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारा ही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती।

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, दिन मह पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हूं मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत भूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै, पत खोई आवत जाता ही। कूड़ कलर

कहो क्यों लखिया जिस बख्शे सह पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सुबा।

वैरागी मन मनसा मार समाताही सतगुर सेवह से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाताही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी जा को अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धता हाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाही संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ माहाही काची सौदी टोटा आवे गुरमुख बणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाही सबको बोले आपन पाणे मनमुख दूजे बोल ना जाने अंदले की मत अंदली बोली आई गया दुख ताही दुख मह जन्मे दुख मह मरना दुख ना मिटे बिन गुर की सरना दुखी उपजे दुखी बिन से क्या ले आया क्या ले जाही सच्ची करनी गुर की सिरकारा आवन जान नहीं जम तारा दाल छोड़।

बाल्दी जल निवरै किरपाती आपे जल निध पाएंदा तरत उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवन खेल किया सब थाई कला खिंच टहाएंदा भार अठारह मालन तेरी चौर टुले पवन लै फेरी चंद सूरज दुए दीपक राखी सस कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावह।

जाने जो किछ करे सो आपन पाणे लख चौरासी जी अपाई पाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निहचो होवे मनमुख आप गणाई रोवे नाम भुला ठौर।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप ना रेखिया मित नहीं कीमत शब्द भेद।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरह विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस

अरबद नरबद तुंदु कारा तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रहन ना चांद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओपत

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

नींदा निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो ना तद गोरख ना माशिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएंदा वर्ण भेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देवरा गऊ गायत्री होम जग नहीं तीरथ नावण ना को पूजा लाएंदा ना को मुल्ला ना को काजी ना को सेख मसाय कहाजी रैयत राहो ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ ना भगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साहो आपे बनजारा साचे ए हो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत सास्त

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई। इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे। इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी ज्योत त्रे पवन सारी।

सच कल पाए त्रे पवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाएंदा सुनो रात दिन सदोह किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण ताकी कीमत कह ना सकै को।

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दस अवतारा सिष्ट उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मतवाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

शब्द अत शीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पारी उतारी नानक रेण संत जन संगत

चोहरे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर न लागे तां को, धुन उपजै शब्द जगाया, तू एक अंकार नरान मराजा, तू आप सवार है जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थर तान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसह परधाना।

लख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना हर आत्म राम नाम पाया सर्ब निरंजन पुरख सुजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना काम क्रोध लै गर्दन।

कुल निरंजन गाया, होमे अमित शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया। मारू महला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरहो भवजल जग तरना, गुर बोहिथ गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जप पार लंघाया। हों मैं ममता लोभ बनासन, नौ दर मुक्ते दसवै आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आपे उपाया। गुरमत लेव हर लिव तरिया, अकल गाए जमते क्या डरिया, जात जात देखो तत तत तुम ही, अवरना दुतिया गाया। सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, कथ कथ देख अपरंपर, हुन गर्भ ना जोनी जाया। सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुर मुक्त न आवे जावे। मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया। सच बिन भवजल जाए ना तरिया, यो समुंद अथाह महाबिख भरिया।

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाईऐ बिन गुर राम नाम क्यों त्याईऐ गुरमत लेहो तरो भाव दुत्तर मुक्त भये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत लेहो परम पद पाईऐ नानक गुर परम चुकाया गुरमत लेहो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मरारी जम के फाहे काट है हर जप अकुल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत यगन निवार।

नारी देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनुभव पद पावे आप गुआई ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ पंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपे हो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पव जल भारत राया एहो पव जल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरी पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई शब्द सुरत बिन आई जाइए नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने। अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया। निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाई है, हर

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुपत प्रगट हर घट घट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम त्याए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेव हो सतगुर समुंद अथाहा, पाव हो नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाव हो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेव हो संक ना कीजै, आसा माहि निरास रहीजै, संसार दुख बनासन सेव हो, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे भावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो होमै, पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया, तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया, न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया, नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

आई, गुर परसादी कीमत पाई। मन मुख बहुत फिरै बिल लांदी, दूजे पाए खुआई। हो मैं माया विचे पाई, मन मुख भूले।

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

सो लागै, गुर प्रसादी जम का पौ भागै। अंतर शब्द सदा सुख दाता, गुरमुख बूझै कोई। आपे मेले मेल मलाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। आन दिन भगत करे।

बार कृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अनदिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

लाई, जे सौ धोवै ता मैल ना जाई, शब्द धोपै ता हच्छी होवै, फिर मैली मूल ना होई हे। पंच दूत काया संगारह, मर मर जमह शब्द ना विचारह, अंतर माया मोह गुबारा, ज्यो सुपने सुध ना होई हे। एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलिया बडभागे, अंतर साच रवह रंग राती, सहज समावै सोई हे। गुर की चाल गुरु ते जापै, पूरा सेवक शब्द समझापै, सच्चा शब्द रवै काट अंतर, रसना रस चाखै सच सोई हे। हउमै मारे शब्द निवारी, हर का नाम रखै उर धारी, एक सुबिन हो होर न जाना, सहजे होए सो होई हे। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूजै सच समाया, सच्चा सेव शब्द सच राती, हउमै शब्द खोई हे। आपे गुणदाता बिचारी, गुरमुख देवै पक्की सारी, नानक नाम समावै साचै, साचे ते पत होई हे। मारू महला तीजा, जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता, एको अमर एका पातशाही, जुग जुग सिरकार बनाई हे। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता, रसना शब्द रती गुण गावे।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई है। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई है। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई है। एक ग्रह कटम मैं सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई है। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझे, भगत पाए

आपे पाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यूं फरमाई है। सतगुर सेव है से जन साची, मनमुख सेव न जानन काची, आपे करता कर कर वेखै, ज्यो पावै त्यो लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है। हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जमह दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो लिवलाई है। जोत सुभावै सोई करसी, आपो हो आना किस होसी।

को जासी दूजै भाए बहादा जम फासी सतगुर राखे से गन उपरे साचे साच समाई हे आपे करता कर कर वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै अज्ञानी अंध कमाई हे मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साच समाई हे धंधै धावत मन भया मनूरा फिर होवै कंचन भेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरै शब्द मलाई हे दुरमत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोलै दुरमत नाम ना पाई हे औगण यारी कंत ना पावै मन की झूठी झूठ कमावै फिर का साहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई हे दुरमत खोटी खोट कमावै सिंगार करे फिर खसम ना पावै।

रस लाई, गुरमुख लिव साखी सहज समाई, आपे मेलै आपे कर वेखै, बिन सतगुर बूझ ना पाई। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किछु ना जाई। हे काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उर तारे, सतगुर सेवा ते सुख पाया।

न पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जा आप कराई, जित पावे तित राहे चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो

गैर गंभीर है, सब जग है तिस ही कह चीर है, सब कट भोग वै सदा दिन राती, आपे सुख नवासी है, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, आपे आए वस्या।

बिनस तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम भोजन सत्य आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हौं तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

ਬੀਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪਤ ਪਾਏ ਇਕਤ ਨਾਮ ਨਵਾਸੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਧਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ।

वेद बाद सब आख बखाण है, ना अंतर भीजै ना शब्द पछाण है। पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पीजै ही। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक नाम रते मन साचा, सचो सच रवीजै ही। मारू महला तीजा, सच्चा सच्चा तख्त रचाया। निज कर वसिया तिथै मोह ना माया, सद ही साच वसिया घट।

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे से दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया।

गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कटांब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सबना जिया काया धारी, हम मैं मेरा दूजा पाया, किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तन तन साचा भगत परे भंडारी है। आपे वेखै हुक्म चलाए अपना पाणा आप कराए। नानक नाम रते बैरागी मन तन

जिन अपना आप पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे।

कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई सदा सा।

हरे शब्द पछाताई। सिमरत शास्त्र बहुत विस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा। मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाताई। आपे करता करी कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई। नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाताई। मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा। शब्दे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। आपे अगम अथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई।

सच्ची नाई, गुरमुख देव मन वसाई, जिन मन वसया से जन सोह, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुणदाता, लेखा कोई न मंगे ताहाई, ब्रह्मा विष्ण रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावह अलाखे अपेवा।

जाता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै को सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम निवलागी सदा सुखदाता रवया घट अंतर।

गुर सेवे कोर अंधारा, बिन शब्द कोए न पावे पारा। जो शब्द राते महाबैरागी, सो सच शब्दे लाहा ही। दुख सुख करते तुर लिख पाया।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो निवलाई, हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक जन नाम

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

उपाया आपे फर्क करे वेख विगसै सब रस देही माहाई वाजे पौन तै आप बजाई शिव शक्ति देही मह पाई गुर प्रसादी उल्टी होवै ज्ञान रतन।

अनलिन हर का नाम बखाणी, हर हर सच्चा वसै घट अंतर, सो घट निर्मलता हाही, सेवक सेव है शब्द सलाह है, सदा रंग राते हर गुण गाव है, आपे बख्शे शब्द मलाई, परमल वास मन ताहाई, शब्दे कथ कथे सलाही, मेरे प्रभ साचे वे परवाही, आपे गुण दाता शब्द मलाई, शब्द का रस ताहाई, मनमुख भूला ठहर ना पाई, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाई, बिख्या राते बिख्या खोजै,

ये कर्म कमाए गुर कृपा ते घट अंतर वसिया शब्दे सच सलाहाई से जन मिले तुर आप मलाई साची बाणी शब्द सुहाई नानक जन गुण गावे नित साची गुण गावे गुणी समाहाई मारू महला तीजा निचले एक सदा सच सोई पूरे गुरते सोजी होई हर रस पीने सदा त्यायन गुरमत सील सनाहाई अंदर रंग सदा सचियारा गुर कै शब्द हर नाम प्यारा नौ निद नाम वसिया घट अंतर छोड़िया माया का लाहाई रैयत राजे दुरमत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक त्याय न

गुरमुख साख्या सदा त्याहु गत मुखत तिसै ते पाहाई सच संयम सत गुरु द्वारे हों मैं क्रोध शब्द निवारे सतगुर सेव सदा सुख पाई है सील संतोख सब ताहाई हों मैं मोह उपजै संसारा सब जग बिन सै नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है नाम सच्चा जग लाहाई सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कार्य सच नाम सुहेला बिन शब्द है कार्य के हाई खिन मह हसै खिन मह रोवै दूजी

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिंह सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले बड़ियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द न कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माही समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, कट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवै सो तत् बलोवै, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़ है बाहर धाव है, मन मुख अंधे साध ना पाव है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै।

ते बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै।

निंदा गुरमुख सच संयम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाईंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाई सच्चै नाम सदा निभलाई जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाईंदा जां तिस भावै सतगुरु मलाई जां तिस भावै तां मन वसाई अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाईंदा मन हठ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाईंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाई, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे, गुरमुख

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाने नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाएंदा मारू महला तीजा आद जगाद दया।

पाई सब खेल तमाशा तेरी वड्याई आपे वेक करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजी गर इक बाजी पाई पूरे गुर ते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे स्यों चित लाएंदा बाजे बाजे धुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन वह इक रंगी मिल पवन सब बजाएंदा करता करे सो निश्चय होवे गुर कै शब्दे हो मैं खोवे गुर प्रसादी किसे दे वड्याई नामो नाम त्याएंदा।

ना सेवह क्यों सुख पाई है, बिन नावह दुख पाईंदा, आप करी तै आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई,

रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा किल विख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल।

नानक नाम संभाल सदा तू गुरमति मन वसाईंदा मारू महला तीजा हर जीव दाता अगम अथाह ओस तिल ना तमाए वे परवाह तिसनो अपण ना सकै कोई आपे मेल मलाईंदा जो किछ

हट नाले सतगुर दिखाए अंतर नाले नावै काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिय है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे है दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो सच कमावे सदही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा। हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आग्या मोह ना चूकै माया, अग्गै जम काल लेखा लेवे, ज्यों तिन कहानी पीड़ाएंदा। पूरै भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा। किन सुख पाया जो तुद पाई,

रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया घर दर नजर न आवे जम दर बांदा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वडियाई दर सच्चै सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिसे आप मलाई ममता काट सच लिवलाई सदा सच बन जह वापारी ना मुहला पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम त्याएंदा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाने विच को विरला आया पाणा मन्ने सो सुख पाए पाने विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावे सहजे ही सुख सच कमावे।

अनदिन हर सेवे हो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बले हार है जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावां जे हर प्रभ पावां अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसे

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर

आई हित रंग साचे माहे समाई पूरे भाग को एहो रंग पाई गुरमति रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अपमान दरगाह कब ही ना पावे मान दूजे लागे जन्म गवाया बिन बूझे दुख पाईंदा मेरे प्रभ अंदर आप नकाया गुर प्रसाद।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई सहजी सहज मलाएंदा सच्चा महल सच्चे पंडारा आपे देवे देवनहारा गुरमुख सा लाहे सुखदाती मन मेले कीमत पाएंदा काया विच वसत कीमत नहीं पा।

रस न हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

तारा मनमुख अग्या नींद अंधारा धंधे धावत जन्म गवाया बिन नावै दुख पाया कर्म होवै ता सतगुर पाए हउमै महल शब्द जलाई मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया नाम अमोलक अगम अपारा ना को होवा तोलन हारा।

मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चे ना इस माया अज्ञान तृष्णा इस तने जलाई किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई तन मन शीतल क्रोध नवारी हूं मैं मार समाया सच्चा साहेब सच्ची वडियाई गुर प्रसादी विरले पाई नानक एक कह बेनंती नामे नाम समाया मारू महला तीजा नदरी भगतां।

सच्चे माहि समाया घरै अंदर को घर पाई गुर कै शब्दे सहज सुपाई उथै सोग वियोग न व्यापै सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिर बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावह दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना होई

राम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत हुए।

गुर ते पाई, सतगुर कहो सद बल जाई हे। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी,

सोवै गुरमुख नाम समाए समावै नानक नाम त्याई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख वखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा कर हर जियो सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वसया लिवलाई आप मिलिया जगजीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया तटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वो प्राणी है जां को राखै हर राखन हारा ताको कोई ना साख समारा।

दाता भरपूर समाही सूके ते फुल हरिया कीतन हर त्याव हो चोज वडाणी है जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हो कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी है जो जिये की सार न जाने तिस स्यों किछ न कहिए अजाने मूर्ख स्यों नह लूज पराणी हर जपिए पद निर्वाणी है ना कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखानी है ना करे आस मीत सुत पाई ना करे आस किसे सहा व्यवहार की पराई बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पानी है अन दिन नाम जप हो बनवारी सब आसा मनसा पूरे थारी जन नानक नाम जप हो भव खंडन सुख सहजे रैन विहानी है जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परे तिसकी पत राखे जाए पूछो वेद पुराणी है जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे गुर कै शब्द परम भव भागे विचे ग्रह सदा रह उदासी ज्यों कमल रह विच पानी है।

तुझै तै करते हर अनदेन नाम बखाणी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे माण करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे।

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग मह सोभ सुहाई है जय जयकार जपो जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईसै तिस बिन दूजा अवर न दिसै एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीव है जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवां।

ऐसा वणिज करहु ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासाई फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राखे पिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओ बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊठ सदायो छूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौं बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुख दाता विछड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहयो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौं रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देख बिगसे आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरे हम्यो तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुझे ते होवे देह दान सबसे जंत लोवे टूट न आवे पूर भंडारे तृप्त रहे आगी जाहे जाच है सिद्ध साधक बनवासी जाच है जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचिक देह दान सृष्टि जाहि करह भगत अर रंग अपारा खिन मह थापयो थापन हारा भारू तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भगती जाहि जिस देह दर्श सोई तुद जाने ओह गुर कै शब्द सदा रंग।

जिस चीते आवह तिस पहु केहा, अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरे लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया बनासी थी।

कटै सवाया नित नित रंगा, कटै नाही तोली जाहि। बारह कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया। परख खजाना पाया सराफी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

पदार्थ लहिए, जिसे आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसह बुझाएंदा, हरख सोग का नगर एहु किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो

श्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आप प्रवतिया आप उपाय रचियों पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक घर बारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

को मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजै त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै। सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना। जाकी धूर करे पोनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेट तपार परायना। पार जात लोड़ है मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मला तू। पारस जब भेटै गुरपूरा ता पारस परस दखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाईऐ हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने है तो शमात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहले लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान देवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा। पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले अपार जना। सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरिया सच सोवा। सिमरह खानी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा। सिमरह जाख दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना। सिमरह पास पंखी सब भूता सिमरह बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख ना लखिए एक खिना। कर्ण करामन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सो जिना। जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना। सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जो नी भरमुरुना। गुर का शब्द वसै मन जाकै
दुख दर्द प्रमता का भाग सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सोतनवंता जिन प्रवत्याया सुपतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन बूठा सो पूर कर्मा नाशिना जल पल महियल स्वामी सोई अवर्मा कहिए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काटे ओ ब्रह्म सगला अवर्णा दिसे एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कहन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवरना कोई बिया आद मद अंत प्रव तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत तिस निकट न आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथ ताके पूरन जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

सत्संगा पीत पितंबर त्रेपवन तनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग तर भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिलै जिसे आप मलाई आपो हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सैस फनी सेख अंत न जाने नव तन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर राख हो साध संपन कह संग संग।

परम पद पावूं, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाती, तिन साधु चरण लै हृदय पराती, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पूर्बला, कहो नानक भगत पये सरनाई, देहो दर्स मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है तै आप बखान है, नानक दास दासन को करियो, हर भावे है दासा राख संगा, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, एहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मसल्ला, मनसा मार निवार हुआसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खदाई पाक खरा, सरासरयत लेक मावहु, तरीकत तर्क खोज टलावहु, मारपत मन मारहु अबदाला, मिलहु हकीकत जित फिर न मरा, करान कतेब दिल माहे कमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बंद हो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा, पूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करहु दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल मह जानहु सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मुकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथे खैरी, पंजवे पंजे इकत मकामे, एह पांज वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक बुझ देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोरो खाना, दिल दरियाओ तो वो मैलाना, पीर पछाणे पिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना, नपाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा, जाको मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाए कहाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करन करीमा, सिफत महबत अथाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बराजी, आपे थापे थापे साजी, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किस भौ न व्यापै बालका, गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया, रक्त किरम मह नहीं संघारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओहो सगल कटा का मालका, चरण कमल सरन आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख नवारी, जप हर हर पहो नहीं काल का, समरथ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब तां की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु परकारी पालका, तिसह प्राप्त हो।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोहर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नान

दे। चरण कमल हृदय नित तहारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी। तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना। सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सुवारी। सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग भाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद। सर्व कल्याण जे मन मह चाह, मिल साधु स्वामी रावणा। सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी। काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती। जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना। जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता। किरत कणै को रखै ना कोई, नरक घोर मह पावना। जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया। किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना। तार अन ग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे। हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना। जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापै माया। नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना। आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने। ता की कीमत कहन ना जाई, जत कत ओही समावना। सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता। बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बद है कट है ना कटाए। सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना। अंध कूप ते से काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

एक बांधे एक टीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

गुर तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निहकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर स्यों प्रीति उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटै मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मन मुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

त्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचै सच रंग गूढ़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगै सच पौड़ी हर का नाम अमोल है त्यों कीमत कीजै आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वरतीजै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजै गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजै आवण जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै सलोक महला पहला।

मोए सेव गति गए, मर जन्म है फिर आवह। सलोक महला तीजा, कागो होए न उजला, लोहे नाव ना पार। पिरम पदार्थ मन लै, धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला, सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़ भय वसै, नानक करनी सार। महला तीजा, मारू मारन जो गए, मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है, गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे, जे लोचै सब कोय। नानक मन ही कहो मन मारसी, जे सतगुर भेटै सोए। पौड़ी दोए तरफा उपायन, विच सकत शिव वासा। शक्ति किने ना पायो, फिर जन्म बनासा। गुर सेवै शांत पाईऐ, जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख, उत्तम हर दासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं, नामे बल जासा। सलोक महला तीजा, हुआ पंडित जोत की। वेद पढ़ा मुख चार, नव खन मदे पूजिया। अपने चज विचार, मत सच्चा अखर भुल जा।

कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी, कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै, अफरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै, गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै, सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै, मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै, सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल, साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल, दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास, इश्क महबत नानका लेखा करते पास महला पहला, अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए पौड़ी, मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे, खिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजै ठागे, फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे, तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे, सब तेरी तुद छामणी सब तुदै लागे, सलोक महला पहला सरबे जोए अगछमी दुख कनेरो आत, कालर लादस सर लांगनो लाभ ना पूंजी सात, महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार, नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार, महला पहला पूरब प्रीत प्राण लै मोटो ठाकुर मान, माथे उभै जम मारसी नानक मेलण नाम पौड़ी, आपे पिंड सवार्योन विच नव निद नाम, इक आपे परम पलायन तिन निफल काम, इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम, इकनी सुनकै मन्या हरि उत्तम काम, अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम, सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै हेकै पद रहीद, अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीद, महला पहला मांडल भेद से बाजणु कणो धड़ियै जोए, नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई, महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखी, वड्डा वे परवाह सतगुर मिलै ता पार पवां, मज भर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख पौड़ी, जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावै, जो इच्छन सो पाए दे हर नाम ते आवै, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिलै सो हर गुण गावै, धर्म राय तिनका मित है जम मग ना पावे, हर नाम ते आवै दिन सरात हर नाम समावै, सलोक महला पहला सुनिए एक बखाणिए सुर्ग मृत पयाल, हुक्म न जाई मिटिया जो लिखिया सो नाल, कौन मुआ कौन मारसी कौन आवै कौन जाए, कौन रहसी नानका किसकी सुरत समाए, महला पहला हौ मुआ मैं मारिया पौन वह दरियाओ, तृष्णा थकी नानका जा मन रत्ता नाए, लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए, जीवर सायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए, अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी, इस युग में नाम निदान है नामो नाल चलै, एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे पल्लै, हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल्लै, से साहा सच्चे बन जा रिया जिन हर धन पल्लै, हर कृपा ते हर पाईऐ जां आप हर कल्लै, सलोक महला तीजा
मनमुख व्यापारै सार न जाननी बिक विहाजै बिक संग्रह बिक स्यों तरह प्यार बाहरो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाइनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल करह आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम भलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभ आई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आई जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधा रह सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोई खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझिए जिसनो आप बखाले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै श्लोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना व्याजै कोई गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाउ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटियां नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाव अमृत का रस आया मन वसिया नाउ श्लोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू होवै हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत् ना पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिलै ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम भउ गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए
ਊਤਮ ਮਤ ਤਰਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਪ ਹੋ, ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਤਿਸੈ ਸਮਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮਾਣਕ ਜਿਨ ਪਰਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ। ਆਪੈ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਰਹਿਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ, ਭਉਜਨ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਪੌੜੀ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਲਨੀ, ਮੁੱਠੇ ਅਹਮਤੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਵ ਥੱਕੇ, ਅੰਦਰ ਤਿਖ ਤੱਤੇ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਨਾ ਸੋਧਨੀ, ਮਨਮੁਖ ਵਿਗੁੱਤੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੱਤੇ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਗਤੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਸ, ਕਿਸੈ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ, ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੋਏ ਪੌੜੀ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਵਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਮਿਤ ਕਰ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਪਾਪਾਂ ਦਹੈ ਹਰ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕੈ, ਜਨਮ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸੋਗ ਨਾ ਮੋਹੇ ਜਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਾਂਝ ਧਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦੰਮਾ ਦੰਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਅੰਧ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਟੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਪੌੜੀ। ਭਾਣੇ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਨ, ਭਾਣੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਭਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿਓਨ, ਭਾਣੇ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀ, ਸੱਚ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ, ਨਾਨਕ ਮੁਇਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਰਨਾ, ਜੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਨੀ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਪੜੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ, ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵਣਾ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ, ਆਪੇ ਸਭ ਸੱਚਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਖਸਮ ਕਾ, ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੱਚਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੱਚਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜੱਚਾ। ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਏਂਦਾ, ਤਿਵਹੀ ਕੋ ਨੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ। ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੂੰ ਚਉ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ, ਦੇਈ ਸਿਸੇ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨੀਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲ, ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੁੜਾਵੇ ਦੇਖ, ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਚਰ ਪ੍ਰੀ ਨਾ ਦੇਖ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ, ਹਉ ਪੱਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰ, ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋਲ ਰਸ, ਬਿਨ ਪੱਸੇ ਹਵ ਰਸ ਛਾਰ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਸਭ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਥਾਟ, ਸਿਰਜ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਹਰ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਬੇਦ,
पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सुवारिया वेकी जंत उपाई अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जाने है सब बेदे आप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तो मोहया कद पसी जानी तो हे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैं डाहबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हूं मैं रूग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपण कोई ना सकै तू अविनाशी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगै त्रिण जिस होवै है आप दयाल तिस लावै है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अविनाशी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावनी सहो बैठा अंगन मल पही ना वंजे बिरथड़ा जो घर आवे चल महला पंजवा सेज वशाई कंतकू किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत देखावही तेरी भगत परे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवै है आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही किस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं पिरी महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यों आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवा भोरे भोरे रूहड़े सिवेंदे आलक
मुद्दत पई चराणिया फिर कडू आवै रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जान है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरिया पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अगे सकति हारिया केवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवा अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मेतर हब्बे जानने अपना कहीं ना खाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा ए वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवा देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीव सा महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौहो कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै ऐसी शोभा जने की जे वड़ा हर प्रतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछै हो गई से मैं पिछै पी रव्यास जिन्ना की मैं आसड़ी

मार निवाड़ा गुर पौ जले पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखने महला पंजवा जा मूह आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंझाऊ सो तनी चौंदो मुख अलाय महला पंजवा माणकू मोहे माऊ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाय महला पंजवा।

पौड़ी मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दसे हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्पे हो हम मैं तजो हो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिग साम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई एक बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिए भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं इन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी एक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी फिरह गमानी जग मह क्या गर्भ दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिरह संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी दखणे महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोई नानक किन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा मूह तन प्रेम अथाह पसन कु सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवै जाए पवाई है बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदर हो थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चै पातशाह वेख तुर कर मचा जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मल उतरै सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जनम जय कट बुट्ठा सच तनी महला पंजवा लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो मापिरी पौड़ी
जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई, ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई। ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई, ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई। ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई, ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुखाई। होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई, पूर्ब लिखिया पाया हर स्यों बन आई। दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है, कूड़ै कूड़ी सोए नानक विरले जानी है। जिन सच पल्लै होए महला पंजवा, सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां। सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हौ खन्नीए महला पंजवा। सज्जन सच परख मुख अलावन थोथरा, मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पावड़ी। तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी, बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी। रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी, काजी सेख मसाए का सबे उठ जासी। पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी, रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी। लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी, निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी। दखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल, इक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग। मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा, आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस। आस निराशा हिक तू हौ बल बल बल गई आस। महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोद, बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोद। पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी, कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी। सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी, पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी। जति सती सन्यासिया सब काल है वासी, मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी। जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी, फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी। सलोक दखणे महला पंजवा सह नंगे नह नंग, भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख। नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा, सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी। नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया। महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाशाणु पी हिक कर, नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो। पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा, निश्चल नाम निधान है जिस सिमरत हर लादा। निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा, सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा। दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा, निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा। निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुरसादा, जिन को पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा। सलोक दखणे महला पंजवा जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे, तारे दड़ो पी तार नानक पिर स्यों रत्या। महला पंजवा जिथै कोई कथन नाऊ सुनंदो मां पेरे, मूह जलाऊ तत् नानक प्री पसंदो हरियो थियो। स महला पंजवा मेरी मेरी क्या करह
पुत्र कलत्र स्नेह नानक नाम मिहूणिया निमण आंदी देह पौड़ी नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत्था पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हत्था अकाल मूर्त हृदय त्याएंदा दिन रहन जपंथा मैं छड़िया सगल अपायणो प्रवासै गुर समरथा गुर बख्शिया नाम निधान सबो दुख लथा भुग हो पुंच हो भाई हो पल्लै नाम अगथा नाम दान इशनान दिड़ सदा करहु गुर कथा सहज भया प्रभु पाया जम का पहो लथा सलोक डखने महला पंजवा लगणिया पिरियन पेखंदिया ना तिपिया हब मजाहू सो तनी ब्याह ना डिठो कोई महला पंजवा कथनिया संतहां ते सुखाऊ पंदिया नानक लदनिया तिन्हा जिन्ना भाग मथाहड़ै महला पंजवा डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा पाताला आकाश पूर्ण हब घटा नानक पेख जियो इकत सूत परोतिया पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खलाएंदा नहीं कर दयालक औगण को ना चितारदा गल सीती लायक मुह मंगा सोई देमदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौंपे उन इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालू कदे ना विछड़ै हर पिता सबना गल्ला लायक सलोक डखने महला पंजवा नानक कच्चड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जीवंदे विछड़ै ओए मुया ना जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन कुरन घटा अतकालियां बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सुहंदियां महला पंजवा जल फल नीर भरे शीतल पवन चलार दे सीजनियां सोएन हीरे लाल जड़ंदियां सुपार कपड़ भोग नानक पिरे विहूणी तत्तियां पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ तावह प्राणिया पावह तुर लहना बिन कर्मा किशु ना लभई जे फिर है सब धरना गुर मिल पौ गोविंद का भय डर दूर करना भय ते बैराग उपजै हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म ना मरना हे आए कमाए त्याया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस पौजल तरना सलोक महला पंजवा पहला मरण कबूल

जिन्ना महबत एक से हो ते मानस प्रधान महला पंजवा जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी कीमत कहन ना जाई है सच साहा अडोले सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोले पन्नन करन समरत है ओपत सब परले करन कारन समरत है घट घट सब बोले रिजक समाहे।

किया तुर मौल तुदहों बार किस नहीं नानक गुण बोले राग मारू बाणी कबीर जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडिया कवन कमत तुम लागे बुड हो गे परवार सकल सिउ राम ना जपो अपागे रहाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा जी बदहो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाई आपस को मुनवर कर थापो का को कहो कसाई मन के अंधे आप ना बूझो काहे बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अभिथा जाई नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कह कबीर रामै राम छूटो नाहे ता बूढ़े पहाई बनह बसे क्यों पाई है जौलो मनहु ना तजह बेकार जेह घर बन समसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाइय रामा रंग रवहो आत्मै राम रहाओ जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतया जाते बिखिया ते हुए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माहे बिडान ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहु ना जाए रिद सिद जा को खुरी।

ही पाया राम। ते पवहना बारे बार रहाऊ, झूठा जग डहके कना, दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया, तेह बहुर ना पई प्यास। गुर प्रसाद जेह बूझिया, आसा ते भया निरास। सब सच नदरी आया, जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया, हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया, भ्रम गया समुंदर पार। उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावहंगी। सुन है सुन मिलिया समंदर सी, पवन रूप होए जावहंगे। बहुर हम काहे आवहंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का। हुक्म बुझ समावहंगे रहाउ, जब चूकै पंच धात की रचना। ऐसे भ्रम चुकावहंगे, दर्शन छोड़ भये समंदर सी। एको नाम त्यावहंगे, जित हम लाए तित ही लागे। कैसे कर्म कमावहंगे, हर जी कृपा करे जो अपनी। तौ गुर के शब्द समावहंगे, जीवत मरहु मरहु पुन जीवहु। पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समानी। सुन रहया लिव सोई, जो तुम मोह को दूर करत हो। तौ तुम मुक्त बतावहु, एक अनेक होए रहयो सगल में। अब कैसे परमावहु राम, मोह को तार कहाँ ले जई है। सुदो मुक्त कहाँ देओ कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव। तारन तरन तबे लग कही है, जब लग तत ना जानिया। अब तो बिमल भये घट ही मह, कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावन। काहे की जत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकरे। तह हर को नाम छडावन रहाऊ, काल अकाल खसम का कीना। एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुकते। जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो। बसह पंच किरसाना, नैनू नकटू सर्वनू रसपत। इंद्री कहया ना माना, बाबा अब ना बसो ए गांव। करी करी का लेखा मांगे, कायत के तू नाव रहाओ। तर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी। पंच किरसानवा भाग गए, लह बांधे हो जी हो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संत हो, खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे को।

प्रसाद अनभव किनै ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनभव होए बणा हंबै सहो हदूर देखै ता भव पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझै ता निरपो होए बणा हंबै हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब लोक बणा हंबै तृष्णा पास ना छोड़ी बैरागी अड़े ममता जालिया पिन बणा हंबै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बणा हंबै सतगुर बिन बैराग।

मुग्ध ग्वार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सा दत किया। अबल बल तोड़िया, अचल चल थपिया, अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आदि गुण आदि विखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम से।

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किस ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो

सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल कै हर हर हर ना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाउ नाना ख्यान प्राण वेद विद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाध अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

आड़ पला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सुख है अगन पख है अगन रस सुख है मरिए दुख है पी सो किरत नहारे रत फिर छाया तन ताक है तीद लवे मंज बारी अवगण बांध चली दुख आगे सुख किस साच संभाले नानक जिसनो एहो मन दिया मरण जीवन प्रभ नाले सावन सरस मना कण वरस है रोते आई मैं मन तन सहो भावे फिर परदेस सिधाई फिर घर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराई सेज अकेली खरी दोहेली मरण पया दुख माए हर बिन नींद भूख कहो कैसी कापड़ तन ना सखावे नानक सा सुहागन कंती फिर कै अंक समावे पादो परम भुली पर योबन पछताणी जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी बरसै निसकाली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चवे बबीहा बोले पोयंगम फिर संते मच्छर डंग शायर भर सपर बिन हर क्यों सुख पाई नानक पूछ चलो गुरे अपनी जह प्रभु तह ही जाइए असन आओ पिरा सा तन झूर मुई ता मिलिए प्रभ मेले दूजे पाए खुई झूठ विगुती ता पिर मुती कुकाहा कहा से फुले अगे काम पिछे रुत जाडा देख चलत मन डोले दह दिस साख हरी हरियावल सहज पक्के सो मीठा नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया दीपक सहज बलै तत जलाया दीपक रस तेलो तन पिर मेलो तन अमा है सरसी अवगुण मारी मरे ना सीजै गुण मारी ता मरसी नाम भगत दे निज कर बैठे अजहो तनाड़ी आसा नानक मिलो कपट दर खोलो एक घड़ी खट मासा मगर माहो भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर निश्चल भावे निश्चल चतुर सुजान बधाता चंचल जगत सवाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे प्रभ पाणे ता पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागै नानक सा तन नाह प्यारी अब भगती पिर आगै पोखत खार पड़ै वण तृण रस सुखै आवत की नाही मन तन वसह मुखे मन तन रव रहया जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी अंडज जेरज सेतज उत्पुज कट कट जोत समाणी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर सिओ प्रीत स्नेहो माग पनीत पई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद पावा सर नावा गंग जमन तह बेणी संगम सात समुंद समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माग महारास हर जप अठ सठ तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अन दिन रहस पया आप गुआया मन मोह चुकाया जा किस फाया कर कृपा कर आऊ बहुते वेस करी पिर बाजू महली लहा ना थाऊ हार डोर रस पाट पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी नानक मेल लई गुरे अपने घर वर पाया नारी दे दस महारुती
थिति वार भले घड़ी मूर्त पल साची आए सहज मिले प्रभ मिले प्यारी कारज सारी करता सब बिद जाने जिन शिंगारी तिसह प्यारी मेल भया रंग माने कर सेज सुहावी जा फिर रावी गुरमुख मस्तक भागो नानक ऐन सरावै प्रीतम हर वार थिर सुहागो। तुखारी महला पहला पहले पहरे नैन सलो नड़िए।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैण अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइये, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मूर्ख

नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए अपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजै बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया

राम अन दिन पूर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर पया मन मानिया।

होई प्रगट हुई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपै पेयड़ घर शब्द पतीनी सहुरड़ पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला पुलावड़ भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोडियाड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदन राती काम क्रोध अहंकार विगुत्ती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया असमै पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी भुल भुल पछो ताणी सुन लाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज घर वसे अड़ा हौ रुल भसमै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कहिए क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

घर जाइए है साची सच मत तेरी, साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी, मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिला प्यारी, मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा, क्यों पाई है पिर पारे, सतगुर शब्दी मिलै विछुनी, तन मन आगे राखे, नानक अमृत बिरख महारस फलिया, मिल प्रीतम रस चाखे, महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे, अनदिन रतड़िए सहज मलीजे, सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे, गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई, मन मुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा, मटकी फोड़ निरारी नानक आपे आप पछाणे, गुरमुख तत बीचारी तुखारी महला पहला, मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर अलख लखाया अवर ना दूजा भाले, गुर अलख लखाया जा तिस पाया, जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता, सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिए, सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा, तू सर्ब जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे, शब्दे रव रहिया गुर रूप मरारे, गुर रूप मरारे त्रे पवन तारे, ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंते अपाए, नित देव है चढ़ै सुआया अपरंपर आपे थाप उथापे, तिस भावे सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया, गुण कै हार परोवै गुण गुण है समाने, मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु, सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पा।

मूल नरारे नानक ज्योति ज्योत समाणी जा मिलिया अत प्यारे सच कर खोज लहे साचा गुर थानो मनमुख नह पाईए गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना

गुण गाए राम रसाए रसियह गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारहे तय काट निरपहो तरह दुत्तर गुर मिले कार्य सारे रूप रंग प्यार हर सिंह हर आप कृपा तारे ए मन मेरिया तू क्या ले आया क्या ले जाए सी राम ए मन मेरिया ता शुक सी जा भरम चुकाए सी राम धन संच हर हर नाम वखर गुर शब्द भाव पछाण हे मैल पर हर शब्द निर्मल महल घर सच जान हे पत नाम पावह घर सदावह झोल अमृत पी रसो हर नाम ते आई है शब्द रस पाई है वड भाग जपी।

सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विटो हों।

अन दिन गुर गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिए राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड निस्तारिए राम, हम मूड मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करहो रख ले वो हर जियो, हम लाग हैं सत गुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास वसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देउ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपरपरा, जो तुम प्यावे जगदीश, ते जान पहो बिखम तरा, बिखम पहो तिन तरया सुहिला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोल है, जा खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अरादया, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पहो बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना, हमरे हाथ किछ नाही, जां तू मेलह ता हों आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तनी ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला।

था। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिनकै तुर लेख मात। जिनको तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम आराध्या। तिनके पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुरबचनी हर जापया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे हो भया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घणी। जिन जपया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिए रखण हार। हर संत संगत जन सुनो भाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान थरंतर हर एको एक रविया। वन त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ, मुख हर हर नाम चवया। सब चवह हर हर नाम करते, असंख अगणत हर त्यावे। सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे। सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया। तू थान तनंतर हर एको एक रवया। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है जिसकै मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिक है। हर गुण हृदय टिक है तिस कह, जिस अंतर भौ भावनी होई। बिन भय किनै ना प्रेम पाया, बिन भय पार ना उतरिया कोई। भौ भावो प्रीत नानक किसह लागै, जिस तू अपनी कृपा करह। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है तुखारी महला चौथा, नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया। अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसी। हर पाया प्रभ अविनासी, हर आप करतै पुरब किया। सतगुरु कुल खेत नावण गया, नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बणी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बणी प्रभ केरी, सब लोक वेखण आया। जिन दर्श सतगुर गुरु किया, तिने आप हर मेलाया। तीर्थ उदम सतगुरु किया, सब लोक उदरन अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ। खबर भई संसार आए त्रै लोआ, देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसया गुर सतगुरु पूरा, तिनके किल विख नास गुआया। जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन, कर गए गोष्ट ढोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ। द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया। जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे, जिन हर हर नाम त्याया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले, तिन जम जगाती नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले, गुर कै नाए लै सब छुटक गया। द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी, तह कौतक चलत भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत, किने आड़ ना दाम लया। आड़ दाम किस पया ना बोलक, जगातिया मोहन मुंदन पई।
भाई हम करहें क्या किस पास मांगहें।

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिले आए नगर महाजना गुर सतगुरु उठ गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद।

गुवाया कीर्तन प्राण नित पुन होवै गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

प्रभु मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई।

कहो नानक जी अड़ा भले हारी, जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया, संतन का सदका सतगुर ताक लिया, मोहे पापी पड़दा ताक नहारे, प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाती, अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख विधाते, उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का।

रमहोरे अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमृत बानी केदारा महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करो खट कर्म जुगत ध्यान धरो अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल सरन बंदन करना पति भव हरन हर हर हर हरे।

रहाउ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार सुख मंगल अन

होता जीवन रूप सार जीव है तेहे कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे भार बाहक खोत आठ पहर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे से

पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नजर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्स बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदिया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वश्यल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

कहे पद है अमरेऊ राम भगत बसेख रहाउ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावै हेत लोग बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास राग भैरू महला पहला घर पहला चौपदी

योगी मन समझै गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब भरपुर लीना सात शब्द निसता।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे, मन

सेवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके।

जावस राम जपहु गुणकारी रहाउ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी मन अंधे सिर तंदा काल बकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंध लो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूणे शब्द बीचार राम रस चाखिया नानक साच पतीने भैरों महला पहला गुर कै संग रह दिन राती राम रसल रंग राता अवर ना जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सो जाने ऐसा मैं मन भावे आप मार।

ते जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निपल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया।

गर्भ ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा। रहाउ चारी वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहु विद भांडे घड़े कुम्हारा। पंच तत् मिन देही का अकारा, घट वध को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा, जोगी गृही पंडित भेख धारी। ए सूते

अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोई, जागत रहे नाम उसे कोई रहाऊ, सो जागे जिस सतगुर मिले, पांच दूत ओह वसगत करे, सो जागे जो तत बीचार है, आप मरे अवरा नह मारे, सो जागे जो एको जाने, परकिरत छोड़े तत पछाण, चहो वरना विच जागे कोई, जमे काले ते छूटे सोई, कहत नानक जन जागे सोई, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होई, भैरो महला तीजा, जाको राखे अपनी सरनाई, साची लागे साचा फल पाई, रे जन कैस्यो करहु पुकारा, हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा रहाऊ, एहो आकार तेरा है तारा, खिन में बिनसे करत ना लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया।

दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म बिचारे इस मन को कोई खोजो हो पाई मन खोजत नाम नौ निध पाई रहाओ मूल मोह कर करतै जगते पाया ममता लाए भरम भुलाया इस मन ते सब पिंड पराणा मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा कर्म होवै गुर कृपा करै एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै मन का सुभाव सदा बैरागी सब मह वसै अतीत अनरागी कहत नानक जो जाने पियो आदि पुरख निरंजन देव भैरो महला तीजा राम नाम जगत निस्तारा भवजन पार उतारन हारा गुर प्रसादी हर नाम संभाल।

उदरे सब कुल उदाहरण हार बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे औखे होवै चोटा खाहे आपे करता देवै सोए नानक नाम प्राप्त होए भैरों महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द बीचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए पूरे गुर मेलावा होए निज कर वसै सहज सुपाए गुरमुख नाम वसै मन आए आपे वेखै वेखण हार नानक नाम रखो उर धार भैरों महला तीजा कल युग मह राम नाम उर धार बिन नावै माथै पावै शार राम नाम दुलभ है भाई गुर प्रसाद वसै मन आई रहाउ राम नाम जन पालह सोए पूरे गुर ते प्राप्त होए हर का पाणा मन है से जन परवान गुर कै शब्द नाम निशान सो सेव हो जो कल रहया तार नानक गुरमुख नाम प्यार भैरों महला तीजा कल युग मह बहु कर्म कमाहे ना रुत ना कर्म थाए पाहे कल युग मह राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ तन मन खोज करै मह पाया गुरमुख राम नाम चित लाया ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहया त्यों लोए कल युग मह हर जियो एक होर रुत ना काई नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई भैरों महला तीजा कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा मनमुख रोग व्यापे तृष्णा जलह अधकाई मर मर जमह ठौर ना पावह बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई हउ मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग न जाई रहा सिमरत शास्त्र पढ़ह मुन केते बिन शब्द सुरत ना पाई त्रै गुण

मानी आई। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवावै है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापी। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर धारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मै दुख मरै दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकलै बिष्टा माहि समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिलै वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिलै ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहा। मनमुख मूल गवावे है लाभ मांग है लाहा लाभ किडू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमें रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजह है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाए खुआई। उदर नै सान ना परिये कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हृदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाए।

दूत मलाई। सो प्रभ साचा सब ही साचा, साचा सब अकारा। नानक सतगुर सोजी पाई, सच नाम निस्तारा। भैरव महला तीजा, कल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता। सतयुग परमहंस बीचा।

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया मान जो किस कह सो भला कर मान नानक नाम बखान भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए ले गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थे सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाऊ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरो महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाऊ पशुआ कर्म करे नहीं बूझे

पग लाइन, गुर शब्दी हर भज सुत समायन, मेरे मन हर भज नाम नारायण, हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरमुख भवजल हर नाम तरायण, रहाउ संगत साध मेल हर गायन, गुरमति ले राम रसायन, गुर साधु अमृत ज्ञान सरनायन, सब किलविख पाप गए गवायन, तू आपे करता सृष्ट तरायन, जन नानक मेल तेरा दास दसायन, भैरो महला चौथा, बोल हर नाम सफल सा करी, गुर उपदेश सब दुख पर हरी, मेरे मन हर पज नाम नरहरी, कर कृपा मेलोह गुरपुरा, सत संगत संग सिंध भौ तरी, रहाउ जगजीवन त्याए मन हर सिमरी, कोट कटंतर तेरे पाप पर हरी, सत संगत साध धूर मुख परी, इसनान कियो अठ सठ सुरसरी, हम मूर्ख कौ हर कृपा करी, जन नानक तारे हो तारन हरी, भैरो महला चौथा, सो कृत करनी सार जप माली, हिरदय फेर चले तुद नाली, हर हर नाम जपो बनवाली, कर कृपा मेलोह सत संगत, टूट गई माया जम जाली, रहाउ गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़िए शब्द सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारो नदर निहाली।

जात। हौं तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाउ। जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिस कौ तुम हर राखिया पावै, तिस कै नेड़ै कोई ना जावै। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरू महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम संवार। मद सूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढ़े मार रहाउ। जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार। मता मसूरत तां किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर। जो किश करे सोई भल होसी, हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार। हर जो किश करे सो आपे आपे, ओह पूछ ना किसै करे बीचार। नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार। भैरू महला चौथा, ते साधु हर मेलो स्वामी। जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसै। खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी। रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसे आपन वारी। तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी। ते नर निंदक सोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी।

सो तुद मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी भैरू महला चौथा सत संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम सरे मह नित चरनी जग जीवन हर त्याए तरनी अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाई जेवायत गणनी रहाओ गुरसिख हर बोलो हर गावहो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख घने धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दरगाह हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर धरनी नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवनी।

अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचराएन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देहे लोरोनी सो मुख जलो।

पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे ऐसे दिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहा सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता कर सुख वस्या बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरू महला पंजवा वर्त न रहो नाम है रमदाना तिस सेवी जो रखे निधाना एक गुसाई अल्लो मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाओ हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना भैरू महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ो शिकार मृग पकरे बिन घोर हथियार रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो कर कह गाए मृग पकरे कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कह कर केवल नाम भैरू महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत ना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया नह पीजे अधिक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यों साकत ते को ना ब्रासाया कित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया भैरू महला पंजवा जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिन्ह अपाए तिस कौ पीर गुर गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत हीत धन नह पारना तन

मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाव रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारी अनहद शब्द बजे दरबारी कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई पैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिस की गत होवै पीव

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अष्टि सिमरताई सब मिल एको एक बखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाइ जेह घट प्रगति आई भैरु महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़ै नेड़ै सब को कह गुरमुख भेद बिरला को लह रहाउ निकट न देखै पर ग्रह जाई दर्भ हिरै मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोलै कूड़ माया मोहि मूठा है मूड अंतर वस्त संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करहे सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोए। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तौ कड़िया जे हुवे बाहर, तौ कड़िया जे विसरे नरहर, तौ कड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहया समाए, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तौ कड़िया जे किस होए तिंगाने, तौ कड़िया जे पूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यो पावे त्यों करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवां।

बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहाँ को बखता।

यहाँ कोई पंडित बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हौ त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

अंते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा बेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदनी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

लैत दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कहे साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहियो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। पैरू महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार। इहो मन दीजै ताको वार, सिमरन ताकै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मैं ऊणे सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन महन थावे को दीनो थान। खिन महन माने को दीनो मान, सब मह एक रहिया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा, हर

मोहे दुहागने आप शिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुख हर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान, जां को सतगुर दियो नाम, जां को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना, कहो नानक जो

पियावे बेसवा भजत किस नह शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर पर माया लग भूलो संसार आप भलाया भलावन हार राज रहया बिरथा व्यवहार रहाउ देखत माया रंग बिहाई गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार न जी मह आवे करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ ज्यों जल बिन मीना जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरों महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जप हो नित पाई तार लए सागर संसार रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान सीजन दरगाह पावे मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावे थाओ जुगह जगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी मैं माया पे जाप।

की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होई, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावे।

प्राण बैठावो दास अपने को भगति लावो नमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतर सुगयान सगल पयान का पौ नसे जाने अपने कै हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होवे, निकट न आवे ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ता

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

नाही बहुतै धन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वड भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेटत मन भया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी।

वसह मन आई सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गात हुए रहाव पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शन हार भगत पाए सदा।

आवण जान रहे हर त्याई, भगत पाए प्रभ की लिव लाए, बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की तेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, कर्ण कराव नहार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी।

बंधन का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए दूजे नहीं भूख रोग जाए ता उतरह दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करना हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरू महला पंजवां गुरसो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मह लय दीन दयाल सदा किरपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद घने साध संग मिटे भय भरमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिन मह बिन स्यो महा परेत आठ पहर हर हर जा

करन कारन समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भंजन अवनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जात कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सत

ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल मही अल रवे आसोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने आठ पहर गावत भगवंता।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवां, नाम लैत किस बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुखा नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्बिघन भगत भज हर हर नाम, रसक रसक

ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਸਭ ਵੱਥ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ।

जन धन भैरु महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाई।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन।

त्रिहो गुण की दास के हुए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

नहीं पंग पैरो महला पंजवां निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाहे हर का दास किस बुरा ना मांगे निंदक को

जाके ग्रह में सगल निदान, जाकी सेवा पाई है मान, सगल मनोरथ पूरन हार, जी प्राण भगतन आधार, कट कट अंतर सगल परगास, जप जप जीव है।

सब लगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई, मेरे अंतर गुरु गोपाला, कीता हुआ श्री की करे, अनहोंदा ना उतराया, जो तुर लिखिया सो आए पहुता, जन स्यो वाद रचाया, पिता प्रहलाद स्यो गुरजे उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई, जग जीवन दाता।

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटा।

हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

नानक तिनकै सद बलिहारै राम नाम उर धारी भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाउ जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता।

परवाहा, जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा, जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो साचा साह, नाम हीन नाही पत वे साह, जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जोनी मूचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवन जान, तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल, आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत मलाया, भैरु महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद हमारा, बन ना साको गुण बिस्तारा, रहाउ कोट माया जा कै सेवकाई, कोट जी जा की सह जाए, कोट अपार जना तेरे अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहि, कोट नाम जाकी कीमत नाहि, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देवै आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट बिस्थारन अवरना दूजा, कोट महमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो उपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट अंतर जामी, जत कत देखो तेरा वासा, नानक को गुर कियो परगासा।

नानक को प्रभ मिलियो अचिंता, कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर पिस संग मन राची, रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ, अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार, अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता, अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा, अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत, अचिंत हमारे बिनसे बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा, अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे, अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक, चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई, भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

आवत संग न जात संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी, लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया, कह कबीर।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कत है ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो, संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खलौना जाना, जो हों बौरा तो राम तोरा, लोग मर्म कह जाने मोरा, रहाउ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन

जो निरतन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन दोनों

भीतर आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पाथर बोले ना किश दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कमन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापी।

राती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपेर खीसर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

मिट जाए, तब प्रभ काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही,

हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिव लाए, सतर साय सलार है जाकी, सवा लाख पैकंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे, रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना, चौरासी लख फिरे दीवाना, बाबा आदम को किस नदर दिखा।

सदा पिखारी, दियो जवाब हुए बजगारी। दास कबीर तेरी पनाह समाना, पिसत नजीक राख रहमाना।

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बां

अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को धरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत, अर्ध उर्ध

मन अस फिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट बेद उच्चरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यों नाही काम, रहाओ कोट चंद्र में करह चराक, सुरते

पासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथार है पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोटक लक्ष्मी कर श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिर, इंद्र कोट जाके सेवा कर, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरत बिकराल, कोट कला खेल गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट।

पाचहारी राम कह करताल बुझावे चटिया सब बिगारी राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन धरे रहाव बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी पूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै को पियो मोहे बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख है हर नाखश जिन नखह बदारे हो सुर नर किए सनाथा कह नाम देहु हम नर हर त्याव है राम अपै पद दा।

अहंकार, गाजहस्ती दीनो चमकार, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना पजै खुदाए, ना हो तेरा पूंगड़ा, ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गोपाल गंग जमन जोल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रे पवन धनी पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह ता धरन अकोडी करूं कह ता लेकर ऊपर धरूं

दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की कट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस

समाए मिल हिंदू सब नामे पह जाए जो अब की बार ना जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भगत जना ले उदरिया पार सगल कलेश।

मिलै मरार, जौ गुर देव ता उतरै पार, जौ गुर देव ता वैकुंठ तरै, जौ गुर देव ता जीवत मरै, सत सत सत सत सत गुर देव, झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाव, जौ गुर देव ता नाम दिरडावै।

कोई पारस परसै दुबदा ना हुई रहाओ सो मुन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक समाए मन का स्वभाव सब कोई करे करता हुए सो अन पै रहे फल कारण फूली बन राय फल लागा तब फूल बुलाए ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मथे सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर अबदाली भेसवा रहाउ जिन आकाश कुलह सिर कीनी कौसै सपत पयाला चमर कोस का मंदर तेरा ए बिद बने गोपाला छप्पन कोट

काजी मुल्ला हुवै सेख, जोगी जंगम भगवे पेख। को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ी अस बंद। जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर हो अगसार। हुक्म कर है मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत पंडार। बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग। जटा धार

पर उत्तर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़े पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिनके रमैया नेड़ नाई जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे अंतर लोग मन बिख्या माहे वे निरंजन कैसे पाहे।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू रख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दूर

अपरंपरे अगमे अगोचर गुरमुख हर आप तलाए अतुल तोल रहाउ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठै पाई हर महल ठाऊ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मलावै करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कहो नानक पावह बिरले के बसंत महला तीजा इक तुका साहिब भावै सेवक सेवा करै जीवत मरै सब कुल उधर है।

मति इन बिद पावो प्राणपति रहाउ पीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया चंद सूरज दुए कर ही पीतर

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर किरपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारे जन नानक उर हर अमृत धारी बसंत।

हर मन माही, मर मर जम्मह पी मर जाहि। से जन जीवे जिन हर मन माहि, साच सुमल है साच सुमाहि रहाऊ। हर ना सेवह ते हर ते दूर, दसंतर भवह सिर पावह धूर। हर आपे जन लिए लाए, तिस सदा सुख है तिल ना तमाए। नदर करे चूकै अभमान, साची दरगाह पावै मान। हर जियो वेखै सद हजूर, गुर कै शब्द रहया परपूर। जी जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सद संभाल। दर साचै पत स्यों घर जाए, नानक नाम वडाई पाए। बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मन ते होए। एको वेखै और ना कोई, दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

पाई, तौ जग जीवन वसै मन आई। भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव। आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यो आप चित लाई। मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई। बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मन आई। गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचों आप खोई। तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार। गुर कै हित साचै प्रेम प्यार रहाउ, भगत करे सो जन निर्मल होए। गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावे सूका संसार अग्न तृष्णा जले वारो वार सोई करे जे हर जीव पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुपाई नानक नाम वसे मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुर पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ आपे नेड़ आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घणी फूली बन राय गुरमुख बिबसै सहज सुपाई अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचों झूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाई नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिया शब्द कमाई बसंत महला तीजा पूरे भाग सचकार कमावे एको चेता फिर जोन ना आवे सफल जन्म इस जग में आया।

सोए, नाम रता जन प्रगट होए। एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचै पाए। साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर। एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा होए। जिन सच सेविया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया। बसंत महला तीजा, भगत करह जन देख हजूर। संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह निवलाई। पूरे सतगुर

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

करे आप पाई जिन हरिया किया सब कोए नानक मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मलावा होए राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत त्यों घट घट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्ब थाई गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाओ घट घट अंतर एको हर सोए गुर मिलिया एक प्रगट होए एको एक रहिया भरपूर सागत नर लोभी जान है दूर एको एक वरतै हर लोए नानक हर एको करे सो होए बसंत महला चौथा रैन दिन सदोए सदे पए मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए हर हर केत सदा मन मेरे सब आलस दुख भंज प्रभ पाया गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ मनमुख फिर फिर हो मैं मुए काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे जन्म मरण दो दुख भागे भगत जना को हर कृपा तारी गुरु नानक तुथा मिलिया बनवारी बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदर एक लुकानी सतगुर मिले ता खोजिया मिल ज्योति ज्योत समानी माधो साधु जन देहो मलाए देखत दर्स पाप सब नासह पवित्र परम पद पाए रहाओ पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तब पकरे तन साबत रास उबरिया पाखंड भरम अपाव कर थाके हृद

नानक शांत होवै मन अंतर। नित हिरदय हर गुण गावै, बसंत महला चौथा हिंडोल। तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम मनशे। हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनशे। गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृपसे, जन्म जन्म के किल विक मन भरिया। मिल संगत कर प्रभ हंसे रहाओ, तुमरा जन जात अव जाता। हर जपियो पतत पवीसे, हर कियो सगल भवन ते ऊपर। हर सोभा हर प्रभ दिन से, जात अजात कोई प्रभ ते आवे। सब पूरे मानस तिन से धन वड्डे वड पूरे हर जन। जिन हर धारियो हर उरसे, हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी। हर धार कृपा प्रभ मिलसे, जन नानक गुर पाया हर तूठे। हम किए पतत पवीसे, बसंत हंडोल महला चौथा। मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै, नित हर हर नाम रस गीदे। जो बारक रसक परयो थन माता, थन काढ़े बिलल बलीदे। गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाऊ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीते। ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीते। जन्म जन्म के हों मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा। मन खिन खिन परम परम बहुत आवै, तिल घर नहीं वासा पाईऐ। गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो, घर मंदर आन वसाईऐ। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईऐ। हो मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईऐ रहाओ। कर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमिया लह ना सकाईऐ। ज्यों ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै, त्यों सतगुर वस्त लहाईऐ। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईऐ। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईऐ। मधुसूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईऐ। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईऐ। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान पया दुख बिखिया।

आनंद त्यों हर जन जीव है जप गोविंद सिंह रुचै सद भोजन मास रान देख सूरे चित उलास किरपन को अत धन प्यार हर जन को हर हर आधार सर्ब रंग एक रंग माहे सर्ब सुखा सुख हर कै नाई तिसै प्राप्त एहो निधान नानक गुर।

तिस साध बसंत जिस हृदय नाम ग्रह ता के बसंत घनी जा कै कीर्तन हर धुनी रहाउ प्रीत पार ब्रह्म मौल मना ज्ञान कमाई पूछ जना सो तपसी जिस साध संग साध ध्यानी जिस गुरह रंग से निर्भउ।

मुग्ध सुंदर धार जोत कीन, सब जाचक प्रभ तुम दयाल, नाम जपत होवत निहाल, मेरे प्रीतम कारण करण जोग, हौ पावो तुम ते सगल थोक, रहाउ नाम जपत होवत उधार, नाम जपत सुख सहज सार, नाम जपत पत सोभा होई, नाम जपत बिघन नाही कोई, जा कारण एह दलभ दे,

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जां को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जां की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जां के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

साध संगत त्यो हों मैं छूट। जैसी दासे धीर मीर, कैसे उदाहरण गुर है पीर। तुम दाते प्रभ देन हार, निमक निमक तिस नमस्कार रहाउ। जिसह परापत साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते भये मुकत, भगत अरादह जोग जुगत। नेतर संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन अगाना हर रस है स्वाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरम पर देव। सगल

अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग हो हे जिस प्राण

ने अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

सर्ब ध्यान मह एक ध्यान हर कीर्तन मह उत्तम धुना नानक गुर मिल गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस अरादे जम किछ ना कह जिसकी सेवा सब किछ लह राम राम बोल राम राम त्यागो मन के सगल काम रहाऊ जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद पुरख जिसकी आदान तिसको मिलिया हर निधान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवा मन पन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किलविख काटे साध संग नाम जप्यो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना रहाउ समरथ स्वामी कारण करन मोहे नाथ प्रभ तेरी शरण जी जंत तेरे आधार कर कृपा प्रभ ले निस्तार भव खंडन दुख नास देव सुर

देश जह गोविंद भगत सो धन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद कट कट पहचान हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप करत तू सदा संग निकट पेख प्रभ करनहार ईत ऊत प्रभ कार्ज सार चरण कमल स्यों लगो ध्यान।

पंजवा गुरचरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म प्राप्त जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया।

सद बसंत गुरपुरे की सरनी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप जो जन तेरा जपे नाउ सब फल पाए निश्चल गुण गाओ नानक भगतां।

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो हो प्रभ सुभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवां घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामै के हो जोड़ी गुरमुख बैसो सत

संपत सुपने की देख कहां ऐडानू संग तिहारे कछु ना चाले ताहे कहां लपटानू उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाऊ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह देह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

तारा दुख घणो मरिए करतारा बिन प्रीतम को करे ना सारा सब उत्तम किसे आखो ही ना हर भगती सच नाम पतीना रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे बिन हर भगती दुख कनेरे दुख सुख दाते।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मनमुख पर मैं मंज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना पागे रहाऊ मनमुख अंदले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख 84 जनते अपाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस

0: परम चुकाया बेमोहताज बे अंत अपारा सच पतीजै करन हारा
1: नानक भूले गुर समझावे
0: एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पवरा फूल बेल आपे संगत मीत मेल।

मार पवे नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नजर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी घर घर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करहंगी घर घर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वडियाई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर न रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पाज राम नाम निशान रहाओ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज

रंग खीली एक रत्ती तिल ना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तेल

कर नरीन ले मस्तक लाऊ कर कृपा दीन रहाउ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास।

0: भगत राख।
1: तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोए,
0: एह बिद देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जियो बसह संग, रविदास त्याए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। बसंत महला पंजवा, अनक जन्म भ्रमे जो न माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद भजो मेरे सदा मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत। रहाउ संतोख न आवत कहूं काज, धूम बादर सब माया साज। पाप करम तव नह संगाई, बिख का माता आवै जाई। हौ हौ करत बदे बेकार, मोह लोभ डूबो संसार। काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन का

अपार कर कृपा लड़ ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माही समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सुहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

सिमरत मौली सिंह कतेब शंकर मौल्य जोग ध्यान कबीर को स्वामी सब समान पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोग ध्यान

संगी चोर कर्म सन लाग रहाउ जागै सुख देव अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे नामा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुत मकलाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोवै बिन अस्थन गहु लवेरी पैंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पर्ण साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ाव से आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम रहाओ संडे मर के कहो जाए प्रहलाद बलाए बेग ताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सताव हो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाए तुझ राखनहार मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार ओए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नरसिंह पेव कह कबीर को लखै ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान

आकार सब आपन अवसर चले सार तू अथाह मोहे था नाही प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आस तीर सुख सागर गुण रौ कबीर नायक एक बनजारे पांच बरद पचीसक संग काच नौ बहिया दस गुण आहे कसन बहतर लागी ताहे मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं नकाज जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज रहाउ सात सूत मिल बनज कीन कर्म पावनी संग लीन तीन जगाती करत रार चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हैरानी बनज टूट डह दिस टांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता भरम पाज बसंत हिंडोल कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माता जूठी पिता पी जूठा जूठे ही फल लागे आवह जूठे जाहे पी जूठे जूठे मरह अभागे।

खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी।

तेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चुआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।

तो जाइए जो इहा ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै,

है कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा।

हों तर भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर तो मन चाली लाड।

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझ सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भवती

साध न फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पैराहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पुयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिलक रूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ती दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा। रहाउ इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारी। सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारी। जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मूप सारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम धूर मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सत तीरथ मज्जन किया सत संगत पग नाए धूर। दुर्मत बिकार मलीन मत होशी हिरदा कसुद्ध लागा मोह पूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाई है हों मैं व्याप रहया मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर। नानक संत मिले हर पाई है जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी। भवजन जगत ना जाई तरना जप हर हर पार उतारी। रहाउ हिरदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हिरदय।

खारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबहू बूझ जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावह गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुरे आगै तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरे आगै गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बीचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मनमुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाए। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आए। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भये हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलिया सुख।

अपमान नरहरे नरहर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाउ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड भाग मथुरा तिन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभमान गए तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर अराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवाधु नित नित जागरण करहो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊ, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिनो साध साध सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को, कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाई पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

मित नहीं पाईए सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवां हर जियो अंतर जामी जान करत बुराई मनुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ। बैसलो नाम करत खट करमा अंतर लोभ जुठान संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान करह सोम पाक हिरह पर दर्भ।

करह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब करमान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुर बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

साई सारंग महला पंजवा ओए सुख का स्यो वर्ण सुनावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ विषम पई पेख बिस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमूलक ज्यों चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूज न आवत जावत जां को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन उपाव जेते किस कही है तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्लो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यों हारै रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस स्यों।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुशकार है गिरो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार

अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया, एक सदा खर जाकै हृदय वसिया, किन बेद है तत पछानिया रहाउ, परविरत मार्ग जेता किश होई है, तेता लोग पचारा, जौ नौ हृदय नहीं परगासा, तौ नौ अंध अंधारा, जैसी धरती साधे बहु बिद, बिन बीजै नहीं जामै, राम नाम बिन मुक्त ना हुई है, टुटै नाही अभिमानै, नीर बलोवै अत चरम पावै, नैनू कैसे रिसै, बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू, मिलत नहीं जगदीसै, खोजत खोजत एह बिचारिउ, सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक तिस पयो परापत।

पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लहिए रहाउ। आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी। अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी। गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वड भागे। कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे। काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे। मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे। तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा। पूर रहे ओ सर्व मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा। सार महला पंजवां बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई। अपदेश हमारी गत करन रहाउ। दुख रोग पै सगल बनासी जो आवै हर संत सरन। आप जपै अवरह नाम जपावै वड समरथ तारन तरन। जाको मंत्र उतारै सहसा ऊणे कहो सुभर भरन। हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन। भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन। जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन। हर रसह अगाने सहज समाने मुख ते नाही जात बरन। गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन। सारंग महला पंजवा गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो। भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाओ। संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा। साध है मंत्र मोर लो मनुआ।

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु विद उमकाई रहाउ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एहो मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शन खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाउ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई।

पतत के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा। कहो नानक पाई वड भागी, मन तन हुए बिगासा।

मान करो अब मान न बोलो, भूल चूक तेरी प्रह क्रिया रहाओ, निकट सुनो अर पेखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुरलाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमख जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलाख बरिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सार महला पंजवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहिया, दे नाओ बलिहारी रहाओ, चहो बिस फूल रही बिखिया बिख, गुरमंत्र मूख गरुड़ारी, हाथ दे राख्यो कर अपना, जो जल कमला अलपारी, हो नाही किस मैं क्या हुसा, सब तुम ही कल तारी, नानक भाग परयो हर पाछे, राख संत सदकारी, सारंग महला पंजवा, अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते, कर्म कारण समरथ स्वामी, हर एकस ते मेरी गाते रहाओ, देखे नाना रूप बहुरंगा, अन नाही तुम भांते, देहे आधार सर्व को ठाकुर, जी प्राण सुख दाते, प्रमतो प्रमतो हार जो परयो, तव गुर मिल चरण पराते, कहो नानक मैं सर्व सुख पाया, ए सुख बेहानी राते, सार महला पंजवा, अब मोहे लभ दियो है हर टेका, गुर दयाल पये सुखदाई, अंधलै मानक देखा रहाऊ, काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया, बुद्ध विगास विवेका, ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है, सेवक ठाकुर पये एका, जह ते उठ्यो तह ही आयो, सब ही एकै एका, नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई, प्राणपति हर समका, सारंग महला पंजवा, मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै, पेखायो सर्ब थान देश, प्रिय रोम ना समसर लागै, रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन, तिन स्यो दृष्ट ना करै रुचांगै, हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरे, जो अल कमला लो भांगै, गुण निदान मन मोहन लालन, सुखदाई सर्बांगै, गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो, मिलो सखा गल लागै।

तुम ही सुग्र सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरो धंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाऊ हर सेव हर हृदय बसाऊ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ शूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जेह घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन

लक्षण देख पय मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानथ पय लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यो जल मीना रहाओ राम क्रोध लोभ मद मत सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ये कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला पंजवा अब मोहे धन पायो हर नामा पय अचिंत त्रिशन सब बुझी है इहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत

दुख सहामा गोविंद भजन के निरपै व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारंग महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकर प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलकर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं भोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काढे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थ होहं सारंग महला पंजवा नैनहु देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट।

गासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्वथान घट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत कीरेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग ना लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियर बसेओ सगल

द्वितीया आस बराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सो।

फूल फूल बेख खाई रहा प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते तिस स्यों रुच नहीं राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करै मह पाए कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया।

सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले थिर नानक राजया सार महला पंजवा प्रभ मेरो केते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा आनंदाई रत पाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाईए आस न अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याईए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरनी पाईए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाईए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाईए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताईए सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे।

किन्हीं बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए, पूरन आस हमारी। सारंग महला पंजवा। झूठो माया को मदमान, त्रोहो मोह दूर कर बपरे, संग गोपाल जान रहाउ। मिथ्या राज जोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान। मिथ्या कापर सुगंध चतुराई, मिथ्या भोजन पान। दीन बंदरो दास दासरो, संत है की सारान। मांगन मांगो हुए अचिंता, मिल नानक के हर प्राण। सारंग महला पंजवा।

सह संगी ऊहा नाही जह भारी तिन सिंह राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारंग महला पंजवा।

आओ ऊहीं ते हरेउ ऊहां ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाकली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस।

सेवक की आप की ओ बंधान आद जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरै तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो हो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाइय वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा करहो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जाने आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारू नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्ट।

रहाउ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथि संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराध हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पहानी। सारी महला पंजवा, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत परे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो, पार ब्रह्म कै द्वारे। सारंग महला पंजवा, प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मून ते मनुख करिया, एहो परता।

सर्व प्रतपालक सर्व कटां आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवां, आवे राम सरन बड भागी, एक सबिन किस होर न जाने। अवर अपाव त्यागी रहाउ, मन बच क्रम अराध हर हर, साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है, जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवां, जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाओ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही, आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही। जहते उपजेओ तही समानो, साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवां, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद बिसार सगले, भलो नाम सुआओ रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय, एक स्यों लिवलाओ। साध संगत होहे निर्मल, बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा, तून थावे थाओ। सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवां, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुक्त पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, माया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन, पाइय सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी। कहो नानक एक राम नाम बिन, अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवां, साचे सत गुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नास्त है। चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन, निचल हर का नाउ। भगत भावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाई है, सगल घटा आधार। नानक वाहो वाहो कहो तां को, जा का अंत ना पार। सारंग महला पंजवां, गुर के चरण बसे मन मेरा, पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई। निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम निवलाई। संत संग बन आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करहु प्रभ मेरे, सो हर का जस गावे। आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवां, जीवन तो गनी है हर पेखा, करहु कृपा प्रीतम मन मोहन। फोर परम की रेखा रहाओ, कहत सुनत किश शांत ना उपजत। बिन बसास क्या सेखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत। तां कै मुख लागे का लेखा, जां कै रास सर्व सुख स्वामी। आन न मानत भेखा, नानक दर्स मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवां, सिमरन राम को एक नाम, कलमल दग्ध होहे खिने अंतर। कोट दान इशनान रहाओ, आन जंजार वृथा श्रम कालत। बिन हर फोकट ज्ञान, जन्म मरण संकट ते छूटे। जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूर्ण सुख सागर। कर कृपा देव दान, सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे, बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवां, तूरत सोई जे तुर को लागे,
सोई पुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ। बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रचियो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाला राम नाम रस खीवन।

काल जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख ले हो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती।

तेरी सरलाई ज्यो भावै तिवै चलाई सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल भी सहसार रहाव ग्रह अंधकूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उदार सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवां आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रवार नानक दास दर्स प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवां मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवां रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर ना पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवां कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादी सिर उठाई पोट उगर गन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवां अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवण शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछताव है कभू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवां।

उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावे, इहां दुख आगे नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे, प्रगट भया खंडी ब्रह्मनी, कीता अपना पाया, नानक शरण निरपहु करते की, आनंद मंगल गुण गाया, सारंग महला पंजवा, कृष्णा चलत बहु प्रकार, पूर्ण होत न कतहु बात है,

नहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए। अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुरु नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निध पाही। सारी महला पंजवा, निभहि नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निध तन, बिखै माहे अलेप रहाओ। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ, बहु

प्रीत मन बेदया तर सर्बस अंतर राखी वेद प्राण सिमरत साधु जन ए बाणी रसना भाखी जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी जह दुर्गंध तहां तू बैसह महा बिख्या मद चाखी रहा कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी संतां बिन तै कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी जी जंत सगले तै मोहे बिन संतां किने ना लाखी नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी सारंग महला पंजवां मायरी काटी जम की फास हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस महाध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो सारंग महला पंजवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर रहा प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस धन मोर त्रिग शरीर अस्त बिष्टा क्रिम बिन हर जानत होर भयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्बला जोर नानक सरन कृपा निध सागर बिन से आन निहोर सारंग महला पंजवां नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए रमण गुण गोपाल करते नानका सच जोए सारंग महला पंजवां हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राच है मिथन सब विस्थार रहाओ साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बहुर जन्म ना मार तार अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रहन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारंग महला पंजवा मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाए बिनसी सब अवमानी रहाओ तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सूक आनंद कनेरे ठाकुर दर्स त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवां त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जां को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति असार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारू मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारन महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे वर्त संध सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्स नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुख बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवन सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण शरण परन साधु आन वान बिसारे हर चरण प्रीत नीत नीत पाम नाम महापनीत सेवक पै दूर करन कलमल दुख जारे कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार पूत नानक तत बीचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास सिमर अंतर जामी।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाई का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना चालै कहां ताहे लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तांस्यो रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यों सुखना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यो लपटाही या यग महकू रहन न पावे एक आवह एक जाही रहाओ का को तन धन संपत का की का स्यो नेहो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गवावे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सोउ जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू न हर गुण गायो दिखिया सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहूं मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई। ऐसी रबत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई। विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई। हृदय नाम सदा धुन निश्चल घटै न कीमत पाई। बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई। प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई। जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पही मन पहाई। सहज समाध सदा निवहर सियों जीवा हर गुण गाई। गुर कै शब्द रत्ता बैरागी निज कर ताड़ी लाई।

सूझै पाए मोख द्वारा, जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै। सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै, आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै। जिन गुरमुख साच आधारा, मन मुख दूजै परम भुलाए, ना बूझै विचारा। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे कर कर वेखै, नानक से जर थाए पए हैं।

कर्म करावन उपाय सुमावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संत हो कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे। कट कट कथा राजन की चाल कर कर तुझह उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारंग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंद्र उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर। अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात। अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख वेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल। अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होत बखियान। अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान। अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर। अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते। अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड। अनक बना अनक फल मूल आपह सूख में आपह असथूल। अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात। अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए। अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय। अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत। सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग। अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बेआप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भये निहाल। सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता। कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया। अब रस माणे भोग कटाणे आनना बिया कोथिया। हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता।
कौन उपमा देवो कमन बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किस दिस है, सांग ना कछु हो जाई, कहो नानक हर हर अराध हो, कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, हियो अरापो देहो संदेशा प्रभु जीओ कैसा, कह मोहन परवेसा, अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान थान अंतर देसा, बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता, कह ना सको हर जैसा, देख चरित नानक मन मोहयो, पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा, कर कृपा अपने पह आया, तन सोरदा जेह चरण बसाया, चरण बसाया संत संगाया, अज्ञान अंधेर गुआया, भया प्रगास हृदय उलास, प्रभ लोड़ींदा पाया, दुख नाठा सुख घर मह बूठा, महा आनंद सहजाया, कहो नानक मैं पूरा पाया, कर कृपा अपने पह आया, सारंग की वार महला चौथा, राय महमे हसने की धुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला दूजा, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै, अवर न कुंजी हाथ, महला पहला, ना पीजै रागी ना दी बेद, ना पीजै सुरती ज्ञानी जो, ना पीजै सोगी की तैरोज, ना पीजै रूपी माली रंग, ना पीजै तीत पवै नंग, ना पीजै दाती की तै पुन, ना पीजै बाहर बैठिया सुन, ना पीजै भेड़ मरह भिड़ सूर, ना पीजै केते होवै धूड़, लेखा लिखिया मन कै पाए, नानक पीजै साचै नाए, महला पहला, नव शे खटका करे विचार, निस दिन उचरै पार अठार, तिन पी अंत न पाया तोहे, नाम बिहून मुक्त क्यों होए, नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया, पौड़ी आपे आप निरंजना, जिन आप उपाया, आपे खेल रचायोन, सब जगत सबाया, त्रै गुण आप सिरजियन, माया मोह वधाया, गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया, नानक सच वरतदा सब सच समाया, सलोक महला दूजा।

मुख की गिरही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपई मुख पीता तिख जाई पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगै आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकलो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जां जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अग्गे लेखे मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गवावे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला तर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए आपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दी बान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पवजल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देव सोई श्लोक महला पहला पुरिया खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

सहजे सुख पाया, नाए मन्ने शांत उपजे, हर मन वसाया, नानक नाम रतन है, गुरमुख हर त्याया। सलोक महला पहला, होर श्री कहो है कोई तेरा, तिस अगे तुद आखां, तुद अगे तुदै सलाही, मैं अंधे नौ सुजाखा। जेता आखन साही शब्दी, भाखिया भाई सुपहाई।

सब कारण करता करी देखे वारू वार जे चुपै जे मंगिए दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखे आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्या सुरत उपजै नामे मत होई नाए मन्या गुण उच्चरै नामे सुख सोई नाए मन्या भ्रम कटिया फिर दुख न होई नाए मन्या सालाहिए पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता पुकारंता अजानंता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै।

खसम का खसम हो सब को होए हुक्म पछाण है खसम का ता सच पावे कोई गुरमुख आप पछाणिए बुरा ना दिसै कोई नानक गुरमुख नाम त्याई है सहला आया सोए महला चौथा सबना दाता आप है आपे मेलन हार नानक शब्द मिले ना विछड़ है जिन्ना सेव्या हर दातार पौड़ी गुरमुख हिरदय शांत है नाउ उगव आया जप तप तीर्थ संजम करे मेरे प्रभ पाया हिरदा शुद्ध हर सेम दे सो है गुण गाया मेरे हर जियो एवं भावदा गुरमुख तराया नानक गुरमुख मेलियन हर दर सोहाया सलोक महला पहला तनवंता इव ही कह अवरी धन कौ जाओ नानक ने धन तित दिन जित दिन विसरै नाओ महला पहला सूरज चढ़ै विजोग सब सह घटै यार जा तन मन रत्ता भोग कोई हारे कूजन सब को भरिया फूक आखन कहन ना थम्मी है नानक वेखै आप फूक कढ़ाए तह पवै पौड़ी सत संगत नाम निदान है जिथों हर पाया गुर प्रसादी घट चानना अनेर गवाया लोहा पारस भेटी है कंचन होए आया नानक सतगुर मिले है ना उपाई है मिल नाम ते आया जिन कह पोतै पुन है तिन्नी दर्शन पाया सलोक महला पहला त्रिग तिन्ना का जीविया जे लिख लिख वे कहनाओ खेती जिनकी उजड़ै खलवाड़े क्या थाओ सच्चै शर्म बाहरे अगे लह ना दाद अकल एह ना आखिया अकल गवाई बाद अकली साहिब सेवी है अकली पाई है मान अकली पढ़ कै बुझी है अकली की चैदान नानक आखै राहु एहो होर गल्ला शैतान महला दूजा जैसा करे कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कही है सूरत जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूरत पौड़ी सतगुरे अमृत बिरख है अमृत रस फलिया जिस प्राप्त सो लह गुर शब्दी मिलिया सतगुर कै भाण है जो चलै हर सेती रलिया जम काल जोहे ना सकई कत चानन बलिया नानक बख्श मलायन फिर गर्भ ना गलिया सलोक महला पहला सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान इशनान दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान जुगत धोती सुरत चौंका तिलक करनी होए पाओ भोजन नानका बिरला ता कोई कोई महला तीजा नौमी नेम सच जे करै काम क्रोध तृष्णा उच्चरै दसवीं दसे द्वार जे ठाकै एकादशी एक कर जानै द्वादशी पंच वसगत कर राखै तौ नानक मन मानै ऐसा वर्त रही जय पांडे होर बहुत सिख क्या दीजै पौड़ी भूपतरा जे रंग राए संचहै बिख माया कर कर हेत वधाए दे पर गर्भ चुराया पुत्र कलत्र ना वसह है बहु प्रीत लगाया वेखदियां ही माया तो गई पछतह पछताया जमदर बदे मारी है नानक हर पाया सलोक महला पहला ज्ञान विहूणा गावे गीत भुखे मुला करे मसीत मखट्टू होए कै कन पढ़ाए

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्म आई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूकी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरे झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर उच्चर खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यों सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदियां हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हम मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै भावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करहे सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जी करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावे पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चल बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारिया
आवन जाना दुए पौड़ी, मंगत जन जाचै दान हर देहु सुपाए। हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखा लिया रल रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा, मनमुख बोल ना जाननी, उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे सेठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन वस्या सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हिरियाणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलो ना कटी है फिर आवे जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए ले नानक सच समाए। महला तीजा सच वड़ंजह सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चलह सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग बजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई ता पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए ता वत लह नौ नित पल्ले पाए। घर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुखदाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्हां दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेखै बिकसै मोह माया। देश परदेश धन चराए आन मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन ताए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख है अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम सुमाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार। नानक आपे मेल लए, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै न बिंद। किस स्यो क्यों मन रूसी है, जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याए, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह गुठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे थाए। हर तसै त्यावो संत जन हो, जो अंते लए छड़ाए। हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादिया, तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया। हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोय ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए। आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब

दुख दालद भन तर अरदास सुनी दातार होई शिष्ट ठार ले वो कंठ लगाए अपदा सब हर नानक नाम त्याए प्रभ का सफल घर महला पंजवा उठे मेघ सहावणे हुक्म कीता करतार रिजक उपाय ने अगला ठांड पई संसार तन मन हरिया होया सिमरत अगम अपार कर कृपा प्रभ अपनी सच्चे सिरजनहार कीता लोड़ है सो करह नानक सद बलिहार पौड़ी वड्डा आप अगम है बड़ी वड्याई गुर शब्दी वेख विगसिया अंतर शांत आई सब आपे आप वरतदा आपे है पाई आप नाथ सब नथियन सब हुक्म चलाई नानक हर भावे सो करे सब चले रजाई सुध राग सारंग बाणी भगता की कबीर जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कहां नर गर्भस थोरी बात मन दस नाज टका चार गांठी एंडो टेडो जात रहाओ बहुत प्रताप गाँव सौ पाए दोए लख टका बरात दिस चार की करहो साहिबी जैसे मन हर पात ना को लै आयो एहो धन ना को लै जात रावण हूं ते अदक शत्रपत खिन मह

चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए।

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

गऊ बास कौ संचय खीर गला बांध दोहे ले अहीर माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे अत संचय समझे नहीं मूड धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै।

निफल भई सब सेवा बाट पार घर मूस बिरानो पेट भरे अपराधी जेहे परलोक जाए अपकीरत सोई अविद्या साधी हिंसा तो मन ते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मेल कथा पनीत ना चाली छाड़ मन हर बेमुखन कोस।

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखई पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत

आदि हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किस तुलहा बांध हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कभी

पुर तारा मलार महला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बरस घना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख वगासी तो धन साच शिंगारू अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई नानक राम नाम हृदय अंतर गुरमुख मेल मलाई महला पहला मलार पर दारा पर धन पर लोभा

पीतर अमृत सोई जन पावे, जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाव। दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनु नदर करे करतार। काया महल मंदिर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाईए, हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला, घर दूजा।

जीवन सब श्याम रत परम दै दिसह थाम देहे ना नाउ ना हुए जात उतै देहो ऐतै सब रात साध कर समदा तृष्णा घ्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावे सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निधान से तनवंत दिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला।

संबंध नानक कर्म होवै जपियै कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला।

ब्रह्मा विष्णु महेशा यह त्रैगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख

परम पद पाया वड्डी वड्याई होई आनंदिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई मन रे गुरमुख हृदय विचार तज कूड़ कटंब हउमै बिख तृष्णा चल।

आनंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम संवाही आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाद लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुख दाता जपिए सारंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों आप गवाया।

अंतर वस्या अलख्य पेवा गुरमुख होए न खाई। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवै चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर

नानक कवन बिद करे क्या कोए, सोई मुकत जाको कृपा होए। फन दिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए। मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन, मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई। सतगुर सेवा जम की कान चुकाई, हर प्रभ मिलिया महल घर पाई। प्राणी गुरमुख नाम त्याए, जन्म पदार्थ दुखदा खोया। कौडी बदलै जाए रहाव, कर कृपा गुरमुख लगे प्यार। अंतर भगत हर हर उरतार, भवजल शब्द लंघावन हार। दर साचै दिसै सचियार, बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया। बिन गुर परम भूले बहु माया, हउ मैं ममता बहु मोह बधाया। दूजै पाए मनमुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा। गुर शब्दी जपियै सच लाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा। नानक गुरमुख नाम समाहा, मलार महला तीजा। जीवन मुक्त गुरमति लागे, हर की भगत अन दिन सद जागे। सतगुर सेवह आप गवाए, हौ तिन जन के सद लागो पाए। हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महा।

रहे, गुर शब्दी अस्थिर घर बह, मेरे मन काहे रोस करी जै, लाहा कलयुग राम नाम है, गुरमत अन दिन हृदय रवीजै, रहाउ बाबी हा खिन खिन बिल लाए, बिन फिर देखे नींद ना पाए, इहो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सुपहाए, नाम हीन बिन सह दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख ना जाए, बिन भागा नाम ना

मड़ा शरीर है सब बिरथि काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कही है हर हर कथा सुनावे। तिस गुरु को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विध सतकर मुख संचो हो। तिस पुन की फिर टोट न आवे। सतगुरु देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावे। नानक भाग भले तिस जन के जो हर चरनी चित लावे। मलार महला चौथा जिनके हियर बस्यो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत। तिन देखे मेरा मन बिगसै हो तिनके सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी। जो गुरमत राम रस खांत रहाउ हर के दास साध सखा जन।

सोई हर जन का हर आपे जन मह आप रखांत तन तन गुरु नानक समदर्सी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत मलार महला चौथा अगम गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलोह करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अनदिन हृदय नाम त्याग है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे श्रेष्ठ सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभ कृपा तारी बिख डुबदा काढ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मन मुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछताई।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक।

खीर आधार बारिक जब होता, बिन खीर रहन ना जाई, सार संभाल माता मुख नीर, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभ दाता, भूल है बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जह जाता रहा। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेल, मात पिता कंठ लाए राख, आनंद सहज तब खेल। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निधान ग्रह तेरे, मन बांचे सो लैसी। पिता कृपाल आग्या एह कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहे हृदय बस है नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, तजियो सगल अंदेसा। कार्य सगल अरंभियो कर का, ठाकुर का परुसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी,

सुरपत कर दोख जठर कौ भरते कृपा निद छोड़ आन को पूजह है आत्म घाती हरते हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी टेक न काहू धरते रहाऊ त्याग स्वामी आन को चितवत मूड मुग्ध खल खरते कागर नाव लंघ कत सागर बिरथा कथत हम तरते सेव ब्रंच असुर सुर जेते काल अगन मह जरते नानक सरन चरण कमलन की तुम ना डार हो प्रभ करते।

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश भये मन निर्मल गुण गाए रंग रंगी एह मन दे किए संत मीता कृपाल भये बड़ भागी महा सुख पाया बन्ना साको रेन नानक जन पागी मलार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मलाई सगल सहेली सुख पर सूती जेहे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करूं बराबर जो प्रिय संग राती ए हम मैं की तिठाई पई निमाणी सरन एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे।

नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवां प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवे।

प्यारी प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवा अबे अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदहुत पयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठन पै सागर हर नानक चरण ते आई मलार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया पये कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश तृष्ण सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास सरनाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास

तरन गही अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर न जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानु कोट मध्ये को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानु रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानु लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग न जानु मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिर आनु कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानु।

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथा नाथ दीन दुख भंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवह दास तेरे

सकै आप, सदा सदा मन तिसनु जाप, दृष्ट धार राखे सब जंत, गुण गाव हो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जानह प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवां, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सलाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सो

आन अपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे। पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा प्रिय की सोब सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनक ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी। गिर तर जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जां कै भावनी नीकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारी। रहाउ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए। मन निर्मल उजियारी विषम विषम विषम भई। अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही। प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारी। जन नानक सरण द्वारी। मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल भाग। रहाउ संत संगे मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग। कन घोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोह। मिल संत नानक।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन

सखाई इस बिन घड़ी नहीं जग दीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण अकाशी बिगसै सहज सुपाई प्रीतम प्रीत।

आई कलहर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांदी पिर देस नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रवृदय नवासी भगत रत्ती हर खाई प्रियो प्रियो करै सबै है जेती गुर भावै प्रियो पाई प्रियो नाली सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रह आसमाई गुर प्रसाद घर ही प्रगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद घर ही फिर पाया तो नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बबरे हम मैं गर्भ खपे जागे ऐसा रहाउ जय जगदीश प्रभु रखवारी राखे परखे सोई जेती है तेती तुझ ही ते तुम सारे अवर ना कोई जी

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन शिंगार करी तेता तन तापै कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै भावै दर लहस प्राण। ऊडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा तह मग ना चालन हार। जित घर वसै है तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै। करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै। पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै। एक मूर्ख अंधे मुगद गुआर, एक सतगुर कै भै नाम आधार। साची बाणी मीठी अमृत धार।

चार करै विवेक बुद्ध पाई पुरखै पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चलै मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई करमी पल्ले पाई सतगुर विण किन न पाया मन वेखो हृदय विचार वडभागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर मेटना ना जाए नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए मलार महला तीजा वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे बीचार बिन नावे जम डांड सह मर जन्मै वारु वार सतगुर भेटे मुक्त

हर हर नाम त्याई रहाऊ। हरे अपने पाने से टिपाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यो लागा प्यार। हर कै पाने सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जेवड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई।

कमल प्रगास तित काट नामै नाम निवास हऊ मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजै ना सुख होए कह कह कहण आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिव लाए सद ही नाम वेखह हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

पतत पावन भगत वच्छल कृपा सिंध स्वामिया संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारी नानक दर्श प्यास हर जियो आप लेहो संहारी हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना जल मीन प्रभ जियो एक तू है भिन्न आन ना जानिए गह पुजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी न आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन पूजाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़।

राम राजा आया दैंता मारे ताई हुक्म सबाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंदै लाए आप छपाया।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चले कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघ हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करी पौड़ी सोहर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन में।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा, कलमल होई मे

संबाही जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आई पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाई दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले न मिलिया जाई आपे जोड़ विछोड़िया आपे कुदरत दे दिखाई मोह सोग वजोग है पूर्व लिखिया कमाई हौ बलिहारी तिन को जो हर चरनी रहे लिवलाई ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई से सुखिये सदा सोहणे जिन विचों आप गवाई तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाई सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो तिस बिन अवर ना कोई गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए सहसा मूल ना हो गई सब चिंता विचों जाई जो किश होए सो

नगरी आया हरे आत्म राम मरार पौड़ी अतुल क्यों तोली है बिन तोले पाया ना जाई गुर कै शब्द विचारी है गुण मह रह समाई अपना आप आप तोल सी आपे मिले मलाई तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाई हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाई जगत मुस्से अमृत लुटी है मनमुख बूझ ना पाई विण नावै नाल ना चल सी जासी जन्म गवाई गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किसना वसाई सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्या ते खोतरै चढ़ै चवगल वन महला।

जल पाइए विचों आप गवाई। नानक जिस बिन चसा ना जीव दी सो सतगुर दिया मलाई। पौड़ी खंड पताल असंख मैं गणत ना हुई तू करता गोविंद।

या गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै छुटक जाहे मेरे प्राण तू सुख दाता बेअंत है गुण दाता निधान नानक गुरमुख बख्श लए अंत बेली होए भगवान पौड़ी आपे जगत उपाय कै गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगहा होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार सलोक महला पंजवा रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरै नाउ राती दिन सुसुहेलिया नानक हर गुण गाउ महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चै दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आई जे सतगुर अगै घालिया ओहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख विणनावै कूड़ियार फिर है बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया।

कृकै सहज सुपाय मेघ वर्षा दया कर गुड़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई।

सच समाया। सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सुहागणी। गुर कहित अपार महला तीजा सावन दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक फिर की सार ना जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी। सच्चा अलख अपे हठ ना पतीजय एक गावे है राग परियां राग ना पीजय एक नच नच पूरे है ताल भगत ना कीजय एक अन ना खाहे मूरख तिना क्या कीजय तृष्णा हुई बहुत किवै ना तीजय कर्म बदै कैलो खप मरी जय लाहा नाम संसार अमृत पीजय हर भगती असनेह गुरमुख की जय। सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिऐ सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया

सज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाए नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाही फसल।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसम भावे उहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सख्त।

तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगमय गोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेवया तिन्नी सुख पाया।

शब्द सलाई है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेम दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल घटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रू वह लिया वह फेर बिन बूझे।

मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कितो आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत।

सच पछाणीऐ लिखिया पल्लै पाए सो सच जानीऐ हुक्मी होए नबेड़ गया जानीऐ भौजल तारन हार शब्द पछाणीऐ चोर जार जुआर पीड़े कहानीऐ निंदक लाए तबार मिले हड़वाणीऐ गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानी।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया।

पार हुए फक्कड़ पिटे अंड चुप्पे चंगा नानका विण नावे मोहे गंद महला पहला राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगिया।

पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम विसार तावन तत्या।

कन कमाद कपाह तोय हो त्रिभवन गन्ना तो आख हो बो बिदहचा तो है बहुत बेकारा एते रस छोड़ हो सन्यासी नानक कह विचारा पौड़ी हों क्या आखा एक जीव तेरा अंत ना कि नहीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझ ही माहे समाया एक भगवान वेश कर भ्रम दे बिन सतगुर किने ना पाया देश दसंतर भव थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल विस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दातार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया आपे।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लै, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वै हेला एते जी जाचै है करी।

तास पत तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्तरयो आन रे आन भरपूर सो रहाओ जा कै भागवत लिखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अशोक।

लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटुंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तनै रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत प्यारो प्राण नाथ कमन भगत ते साध संगत पाई।

चौथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभ कृपा करी कृपास अन दिन आनंद भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगन यारे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक।

गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाउ मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया लुभ दो पुत्र कलत्र मोह प्रीत जैसे तरवर की तुष छाया तो

अध्याय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपयो अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा।

कान्हड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर आन।

पाप तरह फूल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुखदाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मनह साधार है ओट पराधी खिल महतार है जा को चीत आवे गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने रहाव ताकै हृदय बस्यो नाम जा को स्वामी कीनो दान ताकै हृदय आई शांत ठाकुर पे

पंजवा तीर्थ प्रभु की गाओ मेरी रसना अनक बार कर बंदन संतन उहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान पर बोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पाई।

लभ देही, जां कौ सतगुर मया करेही। अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा, जां कै हृदय बसह गुर पैरा। साध संग रंग प्रभ त्याया, कहु नानक तिन पूरा पाया। कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूं बन आई। तन मन गलत भये ठाकुर सिउं,

तेरो जन हर जस सुनत उमायो रहाव मनह प्रगास पेख प्रभ की सोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाद समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाव ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै धरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

नाम मंत्र सतगुरु दरड़ाया रहाओ, नह तृप्तानो राज जोबन धन, बहुर बहुर फिर ताया, सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, शांत पाई गुण गाया, बिन बुझे पशु की न्याई, भ्रम मोहे व्याप्यो माया, साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया, कानड़ा महला पंजवां, हर के चरण हृदय गाए, शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याए रहाओ, सगल आस होत पूरन, कोट जन्म दुख जाए, पुन दान अनेक क्रिया, साधु संग समाए, ताप संताप मिटे नानक, बहुड़ काल ना खाए। कानड़ा महला पंजवां कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कथिया संत संग प्रभ ज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाई मान रहाओ, आवत जात रहे श्रम नासे, सिमरत साधु संग, पतत पनीत होहे खिन पीतर, पार ब्रह्म कै रंग, जो जो कथै सुने हर कीर्तन, ता की दुर्मत नास, सगल मनोरथ पावे नानक, पूर्ण होवे आस, कानड़ा महला पंजवां, साध संगत निद हर को नाम, संग सहाई

आन दा सुख सहज मूरत तिसे आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

न धो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यो जान है त्यों तार स्वामी रहाव तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

रहाऊ। कट कट पूर रहे सुख सागर, पै भंजन मेरे प्राण। मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो, मंत्र दियो गुर कान। करत रहे करतग है करना मैं, अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे, मांगन कहो हर दान। कानड़ा महला पंजवा, कहन कहावन कहो कई केत। ऐसो जन बिरलो है सेवक का,

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किछ लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भये तिह संगे।

बढ़ाई। भौजन बिखम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला। भयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ भये कृपाला। मगन भये ही रह दरसारे, कानड़ा महला पंजवा। साजन मीत स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कह संगे। थोरे काज बुरो कह फेरो रहाओ, नाम बिना जेतो लपटायो। कछु नहीं नाही कछ केरो, आगे दृष्टि आवत सब प्रगट। हीहा मोहयो परम अंधेरो, अटकेओ सुत बनता संग माया। देव नहार दा तार बसेरो, कहो नानक एकै पार उसो। बंधन काटन हार गुर मेरो, कानड़ा महला पंजवा। बिखै दल संतन तुमरे गाहियो, तुमरी टेक भरोसा ठाकुर। शरण तुम्हारी आयो रहाओ, जन्म जन्म के महापराशत। दर्शन भेट मटाहयो, भयो प्रगास आनंद उजियारा। सहज समाध समाहयो, कौन कह तुम ते कछ नाही। तुम समरथ अथाहयो, कृपा निधान रंग रूप रस। नाम नानक लै लाहयो, कानड़ा महला पंजवा। बूढ़त प्राणी हर जप धीरै, बिनसै मोह भरम दुख पीरै रहाओ। सिमरो दिन रैन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना। संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन है सुख पाई। साध जना मिल हर जस गाई, रहाओ कर कृपा प्रभ हृदय बसेरो। चरण संतन कै माथा मेरो, पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना। गुरमुख नानक हर जस सुना, कानड़ा महला पंजवा। मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन, रसना हर हर भोजन तृप्तानी। अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ, करनन पूर रहो जस प्रीतम। कल मल दुख सगल मल हरसन, पावन धामन स्वामी सुख पंथा। अंग संग काया संत सरसन, शरण गही पूर्ण अबनासी। आन अपाव थकत नहीं करसन, कर गह लिए नानक जने अपने। अंध घोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा। कोहकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ। अहं मत अन रत कुमित हित प्रीतम, पेखत भ्रमत लाख गरिया। अनित व्यवहार अचार बिदहीनत, माम मत मात कोप जरिया। करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उधर सरन परिया। कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता। हर बिसरते ही हान रहाउ, गोविंद त्याग आन लाग है। अमृतो डार भूम पाग है, बिखै रस स्यों असक्त मूडे। काहे सुख मान, काम क्रोध लोभ व्याप्यो।

हार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चेंद्र हाउ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराद गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाउ अनक पूजा मैं बहु बिद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहां पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोए ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौं बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नवनिध नाम निधान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैन देख साध दर्शेरा।

अंतर करे रे अठसठ मज्जन मैल कटे रे सास सास त्याव मुख नहीं मोरे किस संग ना चाले लाख करोरे प्रभ जी को नाम

टुलेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरसना।

ईत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना भंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो

आय पतत पावन बिरद स्वामी उदरत हे हर त्याय रहाओ संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंध कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख ले हो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारों अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाही इनस्यो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बेहात कानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो।

मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरु मोह मगन अहंताप रहाउ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह जिसह उदार हो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप कानड़ा महला पंजवां कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो जाप जियो बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार परयो द्वार कृपा गोविंद भई मिलियो नाम आधार दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवां घर ग्यारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपने आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मलाए साध संगाए कतहु न जाए करह बसाए गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै चरण लुभाए आनत जाए थान थनाए सर्ब समाए रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्ब समाई रहाउ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई जतन जतन अनक उपावरी तो मिलियो जो किरपाई प्रभु दियार किरपार किरपा निद जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद शासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन सेओ दुख कोर कानड़।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवां करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाऊ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बवरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गु, तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चवावे गु, राम नाम एक तिल तिल गावे।

आया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर कलावै गो पाप बकार मनूर सब भारी दिख दुत्तर तरयो ना जावै गो भौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावै गो राम नाम हर पेटी है हर रामै नाम समावै गो अज्ञान लाए सवालिया

हर हर नाम तुरावे गु जो जो जपै सोई गत पावे ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावे गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावे गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हम मन लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करै अभमानी खड पानी कीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूझै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअल को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावै।

साकत नार सतगुर नहीं पिया, ते बेमुख हर परमावै गो, लोभ लहर सुवान की संगत, बिख माया करंग लगावै गो, राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावै गो, नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख

जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरह तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाय नित त्याय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीज, हर रत्न बंध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

फल पलना सलूक महला चौथा हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दीन लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हो मैं चुका गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आए सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बहु बहु विद भांत उपावनी सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमती तुदै नावनी जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो जित दालत दुख भुख सब लह जावनी सलोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उर धार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार मन हर हर नाम त्याया विख हो मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम ना चेत्यो तिन जूए जन्म सबहार गुर तुठे हर केताया हर नामा हर उर धार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार वड भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार बिन नावे जे कर्म कमावनी नित हों मैं होए खुआर जल हस्ती माल नवाली है सिर पी फिर पावे शार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख

हर खेल किया हरे आपे वरतै, सब जगत किया बनजारा, सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा, सब त्यावह तुद सफल से गावह, गुरमति हर निरंकारा, सब चवह मुख हो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो, जित भवजन पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेहबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जप है इयाणिया, हर तुम वड अगम अगाह, हर देहो प्रभु मत उत्तमा, गुर सत गुर कै पग पाह, सत संगत हर मे

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्याव है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जन हर वसै नित सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस ते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब धन कहो गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुझ पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनिया तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सत गुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिया सतगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सत गुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद

सतगुरु जिनको धुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रव रामो राम रमीत घट घट।

जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुरबचन जपियो मन कीता महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो भाग वस्या बट भाग गुरपूरे देखा लिया नानक हर लिव लाग पौड़ी तन तन सुहावी सफल घड़ी जित हर सेवा मन पानी हर कथा सुनाव हो मेरे गुरसिख हो मेरे हर प्रभ अकथ कहानी क्यों पाई है क्यों देखी है मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाणी तिन विटो हो नानक वारिया जो जप दे हर निर्बाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाई नाम चितवे नामो पढ़े नाम रहे लिवलाय नाम पदार्थ पाई है चिंता गई बिलाय सतगुर मिले नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुद आपे जगते पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाम गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संगार।

पाया। हम बारक प्रत पारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाउ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया थाहा ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहू पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां पया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुरुपदेश हर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साके, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकै है प्रभ तुमंथे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी, हम लोचे हैं प्रभ दिखन थे। तुम बड़ दाते जी जीन के, तुम जानो हो हम बिर थे। कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे। सब तन मन अर्पों अर्प अरापों, कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहु सुबा, हम तुष कर कर बरन थे। हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समरथे। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई। धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाउ। सो हर हर नाम त्यावै हर जन, जिस बड़ भाग मथई। जह दरगह प्रभ लेखा मांगै, तह छूटै नाम त्याए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हौं मैं मैल लग थई। गुर धार कृपा हर जल नावाई, सब किल विक पाप गथई। जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई। जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखै नाम साथी। जन तेरा जस गावह हर हर प्रभ, हर जपियो जगन थई। जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड थई। कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जान। और कोई निंद करे हर जन की, प्रवता का कहे एक तिल नहीं मान रहाउ। और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सब ते ऊच ठाकुर भगवान। हर सेवा ते काल जोहे ना साकै, चरनी आए पवै हर जन। जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको समत दे पहकान। ताको कोई अपर ना साकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज वडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान। ताते जन को आनंद भया।

इन खिन भूल बिगार जगत पित पावहेंगे, जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावहेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावहेंगे, जो हर पावह भगत

कल्याण भोपाली महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिद तरन हर चिंता मणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हरे अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम त्याया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरण जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राख है जन नानक आ

सरे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यों मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा।

दह दिस रवियो मेर तिन्ह समान जत कता तत पेखी हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम भय मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण महला पंजवां गुण नाद धुन आनंद बेद कथत सुनत मुन जना।

ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया।

दुर्गा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख बनासन।

जगत जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ कढीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर।

लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन कौ गुर दीजै। राम राम राम रंग राते, रस रसक घटक नित पीजै। वसुधा सप्त दीप है सागर, कड कंचन काढ़ तरीजै। मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है, हर मांग है हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए तावे है प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जानी उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुर पारस परस करीजै। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सत गुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है, नित आसा आस करीजै। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगीजै। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, ज्यो मरगाई पंक ना पीजै। चंदन वास पोयंगम वेड़ी, किव मिलिय चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहु कीनी, पल बै संतर पसम करीजै। महा उगर पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जननी के, जिन अंतर नाम तरीजै। परस परस भये साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। साकत सूत बहु गुर जी भरिया, क्यों करतान तनीजै। तंत सूत किस निकसै नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

ताद जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जीव जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलावहु, जग थम्मन को थम दी जय। बसदा तलै तलै सब ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम हो वो, सब सिष्ट चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सकत परी जय। मैन दंत निकसे गुर बचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अनग्रह बहु किया, गुर साधु पुरख मली जय। गुण राम नाम बिसथीरन किए, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साध साध मन प्रीतम।

जाय प्रभाती महला पहला तेरा नाम रखन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेरे अंधी वापरे सगल लीजे खोए इहो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाओ पताल पुरिया एक पार हो वह लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे हो वह होर दुखा ते सुख उपजह सुखी हो वह दुख जित मुख तू सलाही है।

शिव ज्योत कन्हों बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जां कै बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जां कै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कही है सर्बे रहिया समवाई जो किछ वरतै सब तेरी रजाई रहाउ प्रगटी ज्योत चूका भगवान सतगुरु दिया अमृत नाम

जल जाए। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए गुरु उपदेश जवाहर मान।

मैल हरै सतगुर पाया पूरा नावण पशु परे तो देव करै रत्ता सच नाम तल हील सो गुर परमल कहिए जाकी वास बनास पत सौरै तास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजै गुरमुख सेव कर जाइए गुरमुख नानक सच समाइए गुरमुख निज पद पाइए प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचारै पढ़ पढ़ पावै मान आपा मदे आप परगासिया।

जैसे अरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर परगास्ती, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी। जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिसते हो आसोई कर मानिया, नानक गिरी उदासी सो प्रवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हौ तिसकै बल जाई। पाप पुन की सार ना जाने, भूला फिरै अजाई। बोलो सच नाम कर।

सुजानिया जगते पूरे प्रवान ता कहो समझावन जाइए जे को भूला होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाओ प्रभातै शब्द त्याईए छोड़ हो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया नगर बुठा साबास जा तू राख।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख।

आई जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

चर अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

रस कमल बिगासे सस कर सूर समाया काल बिंदु मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूलै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रहे प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावे चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहाउ ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचाचारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संतां की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डरपै गुरमुख हृदय मोरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाउ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है कीना ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार ने केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त परे जल निर्मल।

सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदे

साच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै, अन दिन हर रस रहिया आगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग काला हा पहाई।

सच पाए। प्रभाती महला तीजा, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन तू राखन जोग। तुद जेवड मैं अवर ना सूजै, ना को हुआ ना होग। हर जियो सदा तेरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु जब लग जी परान गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाउ मूल पछाणन तिन निज कर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल परगासिया हम मैं दुर्मत खोई सबना मह एको सच वरतै बिरला बूझै कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन मान सद बलिहारी गुरे अपने बिट हो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करे ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग ते आया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी।

राम कट कट पूर रहया प्रभ एको गुरमुख परगत हर हर नाम रहाउ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिन्ना हिरदय प्रगटया जो गुर सरनाई भज पया इंद्री पंच पंचे वासियाण खिमा संतोख गुरमत पावे सो धन धन हर जन वड पूरा जो भय बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरै कर आचार बो संपो संचै जो किछ करै सो नरक परै एको शब्द एको प्रभु वरतै सब एकस ते उत्पत चलै नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख हर हर जाए रलै प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सहलाए पूरा भाग हुवै मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाउ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदर हो जाए आपे साचा लए मलाए गुर की बाणी स्यों लाए प्यार एथै उथै हो आधार आपे देवै सिरजनहार सच्चा मनाए अपना पाणा सोई भगत सुगड़ सुजाना नानक तिस कै सद कुरबाणा प्रभाती महला चौथा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावह गुरमत लिव

उत्तम हृदय अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाईऐ प्रभ अपना, मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गावे है प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोलह, सवरैन संभालह हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल, हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झारह हम बाल रहाओ, साक

प्रसाद। जप मन हर हर नाम निदान, हर दरगाह पावह मान। जिन जपया ते पार प्राण, रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान। सुन मन हर कीरत अठ

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के

नानक उदर है जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहि, तिस गुर की हम चल

सगल त्याग नाम हर जीदा इस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया।

किस पावे सो पल होस, किस गुर को हौ सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम त्याई, ऐसा गुर पाई है वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की सरनाए, प्रभाती महा

होई, सदा सदा प्रभ जी कै संग, उतरी मैल नाम कै रंग, चरण कमल स्यों लागो प्यार, बिनसे काम क्रोध अहंकार, प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत हर

गुरपूरा पाइया वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वाधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा।

मोन ना पवे ईहा ऊहा चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल सात शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै

आमीत पाई जन नानक हर हर जाप। प्रभाती महला पंजवां बेपहास पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम राम राम राम जाप। काल कलेश लोभ मोह दिन सजाए अहंताप रहाउ। आप त्याग संत चरण लाग।

मज्जन नानक पावे सुख अनेक। प्रभाती अष्टपदिया महला पहला बेपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा बौरी मन बौराया, झूठे लालच जन्म गवाया। लपट रही फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया। ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने। शब्द विचार पहु सागर तरे।

मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से

बाद दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद हे ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाए कीर्तना चलह चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाण बोली भाई सुपाई जो किछ वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगध आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रतियै हर अवमान ना जाई जियो अवमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत।

लख चौरासी बिन गुर बूझे जम की फासी एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल गुरमुख छूटै नाम संभाल आपे सदे टिल ना होए शब्द मरे सहला जीवै सोए बिन गुर सोजी किसै ना होए आपे करे करावै सोए झगड़ चुकावै हर गुण गावै पूरा सतगुर सहज समावै एहो मन।

ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हऊ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जानी। भूख प्यासा जग भया, तिपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी।

मिल जगत पाया, ऐसा बल चल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया। कैसे जन विरले जागे अंदर, परख

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया।

हर मंदर एहो जगत है गुरबिन को रंदार दूजा पाओ कर पूज दे मन मुख अंध गवार जिथे लेखा मंगी है तिथे दे जात ना जाए साच रते से उबरे दुखिए दूजे पाए।

टिक एक सकी सिर छाहा वद पुरख स्वामी रहाउ छल नागन स्यो मेरे टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराय अमृत नाम मन रहया अघाय लोभ मोह स्यों गई विखोट गुर कृपाल मोह कीनी छोट एह ठगवारी बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यों ठाट न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम मेव स्यों मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाए हम गुर राख लिए लिवलाय इन लोगन स्यों हम पये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहुत पावस प्रभ सरबाग प्रभ

क्या सोए, तिस बिन बीजो नाई कोए, बैर बरोध शेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तथाई, जह सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो परस

कही है सोई। अलह अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन दीठा। प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठे।

ये मन का भरम ना जाई रहाओ। पकर जियो आनिया देह विनाशी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह तोहया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यों मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत याद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई रहाओ, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा, पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया।

बिखियन स्यों अत लुभान, मत नाहिन फेरी रहाउ, मानस को जन्म लीन, सिमरन नह निमुख कीन, दारा सुख पयो दीन, पगहों परी बेरी, नानक

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलं तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म ना बिंदते।

कार्य कारण करते वस है जिन काल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

आदि कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुत है कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयति कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेह अचुत तन है त्रिगंत मात पिता स्नेह त्रिग स्नेह प्रात बांध वह त्रिग स्नेह बंता बलास सुत है त्रिग स्नेह गिरहार्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अतिथ्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमन है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपंग असथंबन है गोविंद नामंग नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो प्रसन्न माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मं ता मरणं।

वर्तंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य बैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन न सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध सुवज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं न लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निर्तनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बलहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करना मय घट घट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूचलते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते दृता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यति सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान।

मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमरता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोध पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन कर

प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है। कुकर है सुकर है गर्दभ बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण है। कीर्तनंग साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है। नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है। नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है। नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास है। नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग

प्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक कह सर्वत्र रमणं गोविंद है नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बामन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है दयालं सर्वत्र जिया पंच दो

मित्र सत्रह भगवंत भगत भावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवण आप त्याग सगल रेण कह खट लखियन पूर्णं पुरख नानक नाम साध सुवजन है अजा को गंत कांड मूलं।

परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है।

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं साज समझ्य है त्राहे त्राहे सरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

तरह है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धिहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथा रा।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः अचेत मूढ़ा न जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा भिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रियतवं सात हतं परम बादं वर्त इत है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरंग सहकंगता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊणंगता परियंग अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उच्चरणं सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म कर

साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्धे हं साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंत।

गोविंद रमन साध संग मह सुमंत्र साध बचना कोट दोख बनासन है हर चरण कमल त्यानं नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्धिहं बड़ भागन है हर लब्धो मित्र सुमित्तो विदारण कदे ना चित्तो जाका अस्थल तोल अमित्तो सोई नानक सखा जी संग कित्तो आप जसं मटंत सत पुत्र है सिमत बिहर दै गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत।

कसो वरंगण है। रोग सोग बियोग नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया। मोही देख दर्स नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा। हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सो कंत बछाई। हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया। सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है। हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे। तिस बनिया हब शिंगार साई सुहागणे। हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया। हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया। आसा इती आस के आस पुराइया। सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया। हर हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया। दुत्त

आवह सच तना सुपने ऊ भी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औख दे आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए।

प्रेम की दम केहो होती साठ रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल।

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आ।

पवन च भोलन हार, संतोह माखन खाया शास पिय संसार, कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया तिन खाया अवर बलोवन हार, कबीर माया चोरती मुस मुस लावे हाथ, एक कबीरा नाम सै।

की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मरती ना जानिया कोई। ऐसे मरने जो मरे बहुर ना।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्भ ना कीजिए चामल पेटे हाड है।

अजो सोना उस समुंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग। आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाहेंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो।

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर ए चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भूवे।

वीर थोड़ा जल माछुली चीवर मेले ओ जाल ए टोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

होर काया हांडी काठ की ना उह चढ़ बोहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिया गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदम हाज लीजे।

या कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार।

पति पकारे चेह चढ़ी, सुन हो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए। कबीर जा को खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर कै तू भया जा को कहता और। कबीर मारी मरो पसंग की।

आए जिन हर का नाम ना चेतेओ बद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक पर है ते।

क्या करे, जो राम ना करे सहाय, जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय, कबीर अवरह को उपदेश ते मुख।

आई सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाई कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राख नार गद ही हुई कै अवतर पार सह मन चार कबीर चतराई अत कणी

जा मुख कहिए राम देही किसकी बापरी पवित्र होय गो ग्राम कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

पाए। जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल। हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजै कोई।

कहबे को सूबा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहो कहे ना को पते आए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बच रह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे।

पहुंचियों जरा पहुंचियों आए, लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कीनो करतार, किस बिन दूसर को नहीं ये कैसे जनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे है खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजे है मोल ले मन हठ तीरथ जाए, देखा देखी स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओभरी मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परे ओ कटंब।

कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव। ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाव। कबीर कौडी कौडी जोर कै।

होर कबीर बैसनो हुआ ता क्या पया माला मेली चार बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का तज मन का अभमान ऐसा कोई दास हुए

ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराय ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटन ते उजर भला

मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाहया एक लागत ही भुए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुजे हर

सरवर भरा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पर पियो कबीर कबीर पर बाते तारे खिसह।

असंत मन आगर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई कै जाने आपन तनी कै दास देवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी।

सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमर

कौन कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपै आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतकहार कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक है मिल गया एक समाना एक कबीर जा कर साधना सेवी है हर की सेवा नाई ते कर मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया परा करे जे शेक कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार कबीर निर्मल बूंद।

मन में पल्ला ना पकड़े कोई, कबीर धरती अर आकाश में दुए तू बरी आवद, हट दर्शन संसे परे हर चौरासी सिद्ध, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं।

हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू कबीर।

अस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखै सिर जनहार। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए परापूर्व ली पावनी प्रगट होई आए। कबीर टालै टोलै दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए। महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे सी पोषाय ले राम ना लावो चीत नामा

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नान

की ले गो महगे मोल, कबीर राम नाम जानियो नहीं, पाले हो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पई ना बम्ब, कबीर आखी केरे माट के रे माटके

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारो बेदो माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत भाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह ता को बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धनवरी।

आई फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुध।

कंत सिंह अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे ढूई ना लह पेयै नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई धन

कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजे सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम। फरीदा दर्द रवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारिए हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मार।

कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वन कै सर लोहार फरीदा हो लोड़ी सहु अपना तू लोड़ है अंगियार फरीदा इकना आटा अगला इकना ना ही लोण अगे गए संजापसन चोटा खासी कौन पास दमामे सत सिर भेरी सडो रड जाए सुते जी राण मह थिए अतिमा गड फरीदा को

प्रीदा कन मसला सूफ गल गिलकाती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात प्रीदा रत्ती रात ना निकलै जे तन चीरै कोय जो तन रत्ते रब स्यो तिन तन रत ना होय महला तीजा एहो तन सबो रत है रत बिन तन ना होय जो सह रत्ते अपने तित तन लोभ रत ना होय पै पै तन खीण होय लोभ रत विचों जाय ज्यों बैसंतर धात सुध होय त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाय नानक ते जन सोहने जे रत्ते हर रंग लाए फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो जिथों लभी वत छप्पड़ ढूंढै क्या होवै चिक्कड़ डुबै हाथ फरीदा नंढी कंत ना रावियो वड्डी थी मुयास धन कुकेंदी गोर में तै सह ना मिलियास प्रीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछा पी पलिया रेमन गहले बावले मान है क्या रलिया फरीदा कोठे तुकण के तड़ा फिर नींदड़े नेवार जो दे लदे गाण में।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दरवे सानू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही।

वत कुवारी ना थी है, कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे, उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाय, गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय, चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल, फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

समन्नमी टुटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै घर नाथी अज फरीदा भन्नी कड़ी सम

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण होहे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगै मूल ना आवसी दूजक संदी पाही। महला पंजवां फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनो आखिया जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परौहणी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडिया सुत्या मिले ना पाऊ जिन्ना नैण निंदरावले तिन्ना मिलन कुआऊ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़के देखिया ता घर करे हा अग। महला पंजवां फरीदा भूम रंगावली

करे फरीदा दुखा सेती देह गया सूला सेती रात खड़ा पकारे पातनी बेड़ा कपरवात।

चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए कंदी उत्तर रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल न सखण रह गई वासा आया तल गोरां से निमाणिया।

बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर ता वस आवी कंत मत हुंदी होए क्याणा ताण हुंदे होए नताणा अण हुंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा धनी हियाओ ना कही थाए मानक सब अमोल वे

सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परै ही ते परै अपर अपार पार अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धार ओपत परलो एकै निमक तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहि नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन धारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सत बलिहार सर्व गुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थान मन धन तेरो प्राण एक सूत है जहान कवन उपमा देओ बड़े ते बडान जाने कौन तेरो प्यो अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार।

आकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहों थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैक मन सब सुख पाई जे रसन चाखियो तेह जन तृप्त अगाई जेह ठाकुर सो प्रसन्न भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप अभुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम ना पवै अमुलो जेह कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक।

पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

सब ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारू सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारू कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दू कर चारू मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरख की शारू दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहु अगम अपारहु श्री पतनाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अरदानम एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझ समझावत माया रंग बिरंग करत ब्रह्म मोह कै कूप गुबार परयू है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चलह हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विच रहे अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत।

दुर्त निवारण शब्द सरी गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरी गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला गावह सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जमदगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल

खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जिहवा रस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निरवैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन तब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जोग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल

योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रब अवर ना जाने सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायु कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायु गुण गावे है पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समाय।

सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थु सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथु ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे आगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ली समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार काल

सप्त दीप मजार लहना जगतर गुर पर सुमरार तै तो दृढ़ नाम अपार बिमल जास बथार साधक सिद्ध सुजन।

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार कैता हदरत पायु मान सेविया गुर परवान साध अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर्स समान आत्मावंत ज्ञान जानिया अकल गत गुर परवान जा की दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सुथान पहर सील सुनाहु सकत बिदा।

ਸਭ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੀ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ।

है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाऊ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

संसारी जिन भगत भवजल तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्ब सिदी काव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन

पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जक अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया नाम कित संसार किरन रब सुरतर साख है उत्तर दक्षण पूब देश पश्चिम जस भाख है जन्म ता इहो सकियत जित नाम हर हृदय निवास है सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशास है भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भवजन हरन गुरु अमरदास तै पायो नाम त्यावह देवत तीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारी जह नाम समाधियो हरख सो।

जातहु मुखहु भगत उच्चरै अमर गुर इत रंग रातहु मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्याहायु परसेओ गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सकियत चरण गुर अमल पवल रै।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुर अमरदास परसीय अपौ लभे गौ चुकह। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखानो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल अधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कला तार जग मह परवरियो। निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो। जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो। जेहे सिख है संग्रहियो तात हर चरण मलायो। नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो। गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो। जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख है। सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है। भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है। गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार। नानक कुल निम्मल अवतरियो गुण कर तार उचरै। गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर।

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म

सहज रंग दर्शन दियो, रहियो संत हों टोल, साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्य है, मुखों ए पंडित मिठे, वर्ष एक हों फिरियो, किने नहों पर क्यों लायो, कहते हैं कहती सुनी, रहत को

साध सनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनख कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखण।

इव जोधकार कनहर बूंद बसोर मावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु।

निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अवनासी अवगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र ना चंपै काल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमह नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मज्जन

कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करहै लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिद नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरी सो गुर नाम दिरडायो गुर रामदास कल उचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथा

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै।

सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल सत

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाणे अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै इहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै सत गुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मातर जा कहो दृष्ट धारै शब्द रिद बीचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान

ज्ञान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो। सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, जा की सेवा सिद्ध साध, मुन जन सुर नर जाचै।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रे पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण माणिक करै ज्ञान गुर कहियो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

यो ते अकियत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत त्या

पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन अहनस रसै सत कर जानी ओह फुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुगद मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

सत जी धारुहु मानस जन्म देह निस्तारुहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौह जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंद है जो चरण सरण सुख पावे है परमानंद गुरमुख कहियं प्रताख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परनं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरनं जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गति जीता है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंश है जाकी सरनं सतगुर गुर सेव अलख गत जा।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है इशनान इशनान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु।

देख रूप अत अनूप मोह महामग पहे किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरयो हरनाख शहरयो नख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

काल मुकट शीस मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आदि।

निधान सच जान मंत्र एह निसबासर हुए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तोह हम मैं का फंद काट।

गुरु सम्राथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित बड़ो।

मतरापन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नात जात कबलास को जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहों लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह ज्यो कुसुम सुबासे विदह मान गुर आप थप्यो थिर।

धरियो गुर हाथ, तीन भवन भरपूर रहियो सोई। आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो। सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर। गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजोनी संभव। पुरखोत्तम अपार परे, करण कारण समर्थ सदा सोई। सर्ब जी मन त्यायो, श्री गुरु राम दास जयो। जय जग मह तैं हर परम पद पायो, सतगुर नानक भगत करी एक मन। तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज धारी। अगम ज्ञान रस रसियो हियो, गुर अमरदास करतार कियो वस। वाहो वाहो कर त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो। जय जग मह तैं हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा, उब भगत हर के जो गणं। अम्बरीक जय देव तरलोचन, नामा अवर कबीर पणं। तिनको अवतार पयो कल भिंतर, जस जगतर पर छायो। श्री गुरु रामदास जयो, जय जग मह तैं हर परम पद पायो। मनसा कर सिमरंत तुझै नर, काम क्रोध मिट्यो जो तिनं। वाचा कर सिमरंत तुझै, तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणं। कर्म कर तो दर्श परस, पारस सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो, जय जग मह तैं हर परम पद पायो। जेहे सतगुर सिमरंत, नैन के तिमर मिटह खिन। जेहे सतगुर सिमरंत, हृदय हर नाम दिनो दिन। जेहे सतगुर सिमरंत, जी की तपत मिटावे। जेहे सतगुर सिमरंत, रिद सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बल पाण, मिल संगत तन तन करहो। जेहे सतगुर लग प्रभ पाई, सो सतगुर सिमरहो नरहो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करतना छोड्यो पास। ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है, इन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर।

लोभ अपमान स्यो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंध्यो सिख तारी सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगम निग

पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नानक खुटै गुरु रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जान्यो पै निरपहु माण्यो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

गुरसूर शब्द हो मैं निवारियू, पंचाहर निदलियू, सुन सहज निज घर सहारियू, हर नाम लाग जग उधरियू, सतगुर हृदय बसायू, गुरु अर्जन कल उच्चरे, तै जन कह कल सुदीप आयु, सोरठे गुरु अर्जन पुरख प्रमाण, पार्थ उचाले नाही, नीजा नाम निशान, सतगुर शब्द सवारी।

तेज भूमंडल छायु पारस परस परस परस गुर गुरु कहायु पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज।

पछतायु तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायु जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयु काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदारन बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण।

खहर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिय है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय।

नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कमन कह श्री गुरमुयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर संघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जम पहै।

या किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंड ना गर्भ थनी।

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाही पौ नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहयो कोई।

निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाउ जन्मे का फल क्या गणी जहां हर भगत ना पाऊ पैंदा खादा बाद है जहां मन दूजा पाऊ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा आलाउ नानक नाम सलाहे तू होर हौं मैं आवो जाऊ हैन बिरले नाही घणे हैल।

रस कस ना जानंत इक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सार अखर का पियो ना लहंत नानक ते नर असल खार जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संयम कमावै कर्म सील संतोख का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त।

ज्ञान ही नंग अज्ञान पूजा अंधवर तारा पाओ दूजा गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कल्ले उठी चल्ले साध नाही अवेही गल्ले राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जुज अपार सीता लै गया दह सिरू

जो लेवै सो देवै नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां, जैसे ती मेरा संग।

जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फै सर्फै सदा सदा एवै गई विहाय नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाय दोष ना दे राय नो मत चले जा बुढ़ा होवै गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोवै पूरे का किया सब कुछ पूरा घट वा

गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए नानक हों हों करते खप मोए खूहन लख असंख।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है हत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है

ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल हो।

भई मर जीवया सहज सुभाय नानक भगती रतियां हर हर नाम समाय मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाय बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई जो बन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाय पुत कलात मोह।

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहें विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की राखदा। हौ सद बलिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ताका दास, माया पुयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल।

पूत ज्यों, पिता नाम तिस जाय, हर हर नाम ना चेतनी, करतै आप खुआय, हर गुरमुख किरपा तारियन, जन विछुड़े आप मलाय, जन नानक तिस बलिहार नै, जो सतगुर लागे पाय, नाम लगे से उबरे, बिन नामे जमपुर जाहे, नानक बिन नामे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती निचिंद, जिन को पूर

बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमान दे अंत न पारावार। हर कृपा।

जन सिज्जै बिन शब्दै मुक्त ना होई। भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजै परज विगोई। नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईऐ जे सौ लोचै कोई। हर का नाउ अत वड ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई। मुख संयम हच्छा ना होवई कर भेख भवै सब कोई। गुर की पौड़ी जाए चढ़ै कर्म प्राप्त होई। अंतर आए वसै गुर शब्द विचारै कोई। नानक शब्द मरै मन मानिए साचे साची सोई। माया मोह दुख सागर है बिख

नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण दिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर जपया पुरख सो जान जिन्ना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुरबान माया मोह बहु चितवदी बहु आसा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी है मर बिन सजाई खिनवार।

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट।

लिया अंतर अज्ञान गुबार। तब नर सुत्ता जागिया सिर डंड लगा बहु पार। गुरमुख करां उपर हर चीते।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई ओना मैल पतंग न लगई, जे चलन सतगुर पाई मनमुख झूठ न उतरै, जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन गुर कै अंक समाई, बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

दे हर जग जीवन उर धार नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चे दरबार हर मंदर हर साजिया।

पाई, कर्म मिले ता पाई, एक हुक्म मन ना जाननी पाई, दूजे पाए फराय, संगत ढोई ना मिले पाई, बैसन मिले ना खाऊ, नानक हुक्म तिना मनाए सी पाई, जिन्ना तुरे कमाया नाउ, तिन विट हो हौ वारिया पाई, तिन कौ सद बलिहार जाऊ, से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन, अन दिन सेवन गुर आपना, अन दिर हन, नानक से मुह सोहने, सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया, सच बोले है सच कमाहे, सच्चा शब्द मन वस्या, सत गुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच धन, उत्तम पदवी पाहे, सच सुन है सच मन लैन, सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगाह बैसना, सच्चे माहे समाहे, नानक बिन सतगुर सच ना पाईऐ, मन मुख भूले जाहे, बाबीहा प्रियो प्रियो करे, जल निध प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया, सब दुख निवारण हार, तिस चुकै सहज उपजै, चुकै कूक पुकार, नानक गुरम

बूंद पवे सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाय। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आय। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए,

आस सतगुर मिलिया जल पाईऐ चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चाल चलंबलै

प्रसाद वडभागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाय वाहो वाहो सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाहो वाहो सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाहो वाहो सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाहो वाहो सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाहो वाहो सतगुर।

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै दे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाईऐ अन दिन रह आनंद नानक सहज समाईऐ।

संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए पुत कलत कुटंब है माया मोह वधाए।

दुखदाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया, मोह माया विछड़ सब जाए।

आए मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी नित हों मैं कर्म कमाए वर्त नेम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाए अंतरोह कसुद्ध माया मोहे बेदे ज्यों हस्ती शार उड़ाए जिन उपाए तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करतै पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत भई मन मानिया।

आए। नानक हुक्म बूझै तिना रास होए, सतगुर ते सोजी पाए। सब किस तिस ते होया, ज्यों तिसै धीर जाए। सतगुरु विच अमृत नाम है, अमृत कह कहाए। गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम त्याए। अमृत बाणी तत् है, गुरमुख वसै मन आए। हिरदय कमल परगासिया, ज्योति ज्योत मलाए। नानक सतगुर तिनको मेलियोन, जिन तुर मस्तक भाग लखाए। अंदर तिसना आगे है, मन मुख भुख ना जाए। मोह कुटंब सब कूड़ है, कूड़ रहे आल पटाए। अन दिन चिंता चिंतवै, चिंता बद्दा जाए। जम्मन मरन ना चुकई, हौ मैं कर्म कमाए। गुर सरनाई उबरै, नानक लए छडाए। सतगुर पुरख हर ध्याएंदा, सत संगत सतगुर पाए। सत संगत सतगुर सेवंदे, हर मेले गुर मेलाए। एहो पौजल।

पार लंघाए गुरसिखा की हर धूड़ देह हम पापी पी गत पाहे तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुर नानक मिलिया आए जम कंकर मार बदारियन

हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लगई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

ਸਭ ਕਛ ਤਿਸ ਦੇ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिर जनहार।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवा गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर भज मना।

कहो नानक पाज हर मना परै ना जम की फास तरना को यों ही गयो लियो।